एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि, आज रविवार है। तदनुसार 13 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार

0: समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लालबागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयजा सबलिंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील्स कुपुस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.1 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है दया।

0: प्रकार वृक्ष का मूल जितना गहरा होगा, सुदृढ़ होगा, उतना ही अधिक पल्लवित, पुष्पित और फलित होगा। उसी प्रकार मानव में दया भावना जितनी ज्यादा गहरी होगी, विशाल होगी, जीवन उसका उतना ही सुखकारी होगा। दया भाव सात्विक भाव है। मानव की आंतरिक दया भावना की विशालता से उसका जीवन सुखद मंगलमय हो सकता है। जिन जीवों में दया भावना होती है वही मानव जीवन प्राप्त करता है। दया धर्म का मूल है। सभी धर्मों में दया पर जोर दिया गया है। अगर आप दया नहीं कर सकते तो मानव जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। दया रहित जीवन तो पशु पक्षी के समान है। खाया पिया, जीवन यात्रा पूरी की और भगवान के घर पहुंच गए। मानव को बच्चों के प्रति, वृद्धों के प्रति, निर्सहायों के प्रति दया करनी चाहिए। दया करने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ईश्वर ही दया भावना उत्पन्न करता है। दया भावना से और भी बहुत से गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे करुणा, विनम्रता, सहनशीलता। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, दधीचि ऋषि अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्हें दया भाव से पूरा संसार जानता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः, अर्थात यह दया भाव से ही संभव है कि सब जगह हरियाली होगी, खुशहाली होगी। गौतम ऋषि ने 8 संस्कारों को निर्देशित देते हुए बताया है, जीवन में प्रथम स्थान पर दया भाव को रखा गया है। दया सात्विक भाव है। दया का अर्थ है दुखी का दुख दूर करना की अभिलाषा ही दया है। दया बिना संसार का संचालन संभव नहीं है। दयावान अपने पराये का भेद नहीं करता है, नहीं वह हानि लाभ की सोचता है। धर्म की आत्मा दया है। प्रभु की दया मात्र से ही मानव जीवन प्राप्त होता है। माँ की दया से ही बालक बड़ा होता है और शिक्षक की दया से ही मानव पारंगत होता है। हमें सर्वप्रथम अपने प्रति दयावान होना चाहिए। दया भाव को परिवार के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। मनुष्य को दया अवश्य करनी चाहिए, परंतु जहाँ जरूरत हो वहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। दया भावना से युक्त कोई कार्य करते हैं तो वह गलत नहीं हो सकता। दया भाव से हम बड़े से बड़े अहंकारी की नफरत को भी प्यार में बदल सकते हैं। दया की अनुपस्थिति में धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। दया चरित्र को सुंदर बनाती है, सद्गुणी बनाती है। दयाहीन व्यक्ति मुर्दे के समान माना जाता है। दयाहीन मानव निष्ठुर, हिंसक, कपटी होगा। जिसके मन में प्यार, अहिंसा की भावना होगी वही दयावान होगा। मनुष्य के प्राण रहने तक मनुष्य को दया भाव को नहीं त्यागना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रोशनास करा दें। हल्काए इल्म व अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर कर दें। मुशायरों के जरिए शोराए इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना। अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबहसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना डीडी उर्दू चैनल।
1: समूह स्वर में दिशागान के साथ ही वंदना का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमीन चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की 180वीं कड़ी। कलाकार हैं बशीर अहमद और संगीतकार हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड 180 180।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार है सतीश भाटिया।
1: सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमा कर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वनगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय।

6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत मिश्रित स्वर में। सात बजकर 20 मिनट पर समय रहेगा कार्यक्रम वातायन का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे व्यंग वार्ता जिसका शीर्षक है घमंड का वायरस अमित शाह की आवाज में। आपके पसंदीदा कार्यक्रम खुशदिलसे का समय रहेगा प्रातः 8:15 पर। राजस्थानी लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे 8:45 पर। प्रातः 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। वहीं आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रातः 9 बजे जयपुर केंद्र से।

प्रातः 9:10 पर और प्रातः 11 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सदाबहार नगमों का कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 11:30 पर।

सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 10 बजे। सायंकालीन सभा में समाचारों का प्रसारण समय कुछ यूं रहेगा। 6:28 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से, समाचार संध्या 8:45 पर दिल्ली केंद्र से, वहीं आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से।

शाम 7:30 पर लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े श्रोतागण सुन सकेंगे। दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषीय बॉल बाय बॉल कमेंट्री का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। वहीं

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में?
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वातायन जब यही संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वातायन जिसका शीर्षक है घमंड का वायरस अमित शाह की आवाज में।
1: ऐसे संक्रमण की चर्चा करेंगे जिसने दुनिया में सबसे तेज फैलकर चिकित्सा विज्ञान को भी उलझा दिया है, और वो है घमंड का वायरस। न कोई वैक्सीन, न कोई मास्क, न कोई टेस्ट किट, फिर भी यह पकड़ में आ जाता है। चेहरा देखिए, लहजा सुनिए, रिपोर्ट अपने आप पॉजिटिव। किसी को अपनी दौलत पर घमंड, किसी को अपने पद पर, कोई अपनी आवाज को कृपा मान बैठा तो कोई रोज आईने से कहता तुमसे सुंदर कोई नहीं। वैज्ञानिक भी गिनती छोड़ चुके हैं क्योंकि घमंड के वेरिएंट लैब में नहीं जीवन में विकसित होते हैं। पद घमंड वेरिएंट, कुर्सी मिलते ही आदमी आदमी से ऊपर होने का भ्रम पाल लेता है। एक ज्ञान घमंड का वेरिएंट भी है जिसमें व्यक्ति मान लेता है कि उसकी समझ ही अंतिम सत्य है। रूप घमंड वेरिएंट, जहां कैमरा सामने आए और मुस्कान घमंड की पोज बन जाए। दौलत घमंड वेरिएंट एक अलग ही है जो इंसान को यह भ्रम देता है कि नोटों की नीयत से भी खरीदी जा सकती है। और एक नया वेरिएंट भी आया है जिसे लेखनी का वेरिएंट कहा जा सकता है, जो आजकल बहुत चल पड़ा है। इस लेखनी के वेरिएंट में लेखक सोचता है कि कलम से समाज हिल रहा है, जबकि रीडर पन्ना पलटते ही जम्हाई ले रहा होता है। समय बदल गया है और गमन आधुनिक हो गया है। पहले बोली में दिखता था, अब स्टेटस और प्रोफाइल फोटो में। पहले झुकना संस्कार था, अब फोटो खिंचाना ही एटीट्यूड बन गया है। परिणाम चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही है, गमन बढ़े तो इंसानियत घटती है। अगर गमन कोई उत्पाद होता तो गारंटी कार्ड के पीछे लिखा मिलता, इस्तेमाल के बाद बुद्धि का हास तय है। आदमी की आधी परेशानियां बहानों से भी ढक जाती है। बात करने की एक अलग ही कला होती है जो बिना सीखे हर इंसान में जन्मजात होती है, और वह है बहानों की कला। बहाने न हो तो लोग असफलता के बोझ से ही टूट जाए। हर टली हुई योजना, हर रुका हुआ काम, हर अधूरी खरीद, सबके नीचे बहानों की मोटी परत लगी मिलती है। जैसे हाल ही में ख्याल आया गाड़ी ले ली जाए, सुना की कीमतें गिरी है, शोरूम पहुंचे तो बात सही भी निकली, पर फिर भी 8 लाख तो देने ही पड़ेंगे। अब 8 लाख का डिस्काउंट कोई सरकार थोड़ी देगी। सोचा लोन ले लेते हैं, तभी बेटा सनरूफ पड़ गया। समझाया, बेटा बेवजह ऊंचाइयां दिखाने से कभी कभी बंदर भी सिर पर चढ़ जाता है। किसी तरह राजी किया तो पता चला जो मॉडल पसंद आया था उसका नया मॉडल लॉन्च होने वाला है। बस खरीदारी अपने आप पोस्टपोन। अब इसमें गलती किसकी? दुनिया के अधूरे सपनों की जड़ में या तो ईएमआई है या अपडेटेड मॉडल। बहाने सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं, नौकरी के इंटरव्यू तक भी फैले हैं। कोई इंटरव्यू देकर आया और मोहल्ले में घोषणा सिलेक्शन हो गया, पर रात की शिफ्ट थी इसलिए मना कर दिया। असलियत न इंटरव्यू सही हुआ न जवाब देने आता था, पर बहाना इतना मजबूत कि पड़ोसी भी भावुक, सही किया, रात में नौकरी कौन करे। दरअसल बहाने इज्जत का सेफ्टी एयर बैग है, हर स्तर पर चले आते हैं। योजना अधूरी है तो पहले वालों की गलती थी, सड़क टूटी है तो बारिश ज्यादा थी।

हम भी कम नहीं, दूध फटे तो फ्रिज बंद था, काम न बने तो नेट स्लो था और वोट न डाले तो लाइनें लंबी थी। सच में बहाने हमारे चरित्र का सनरूफ है, ऊपर से साफ और नीचे असली ढकी हुई, और शायद यही वजह है कि हमारी इज्जत आज भी चालू हालत में है, वरना बिना बहानों में कोई भी किसी को भी मुंह दिखाने लायक न बचे। आखिर में बस एक पंक्ति जिसे सुनकर हर आदमी अपने दिल में मुस्कुराएगा, इच्छा तो बहुत थी पर टाइम ही नहीं मिला। खैर अब चलते हैं स्टेटस की दुनिया में। आज अगर किसी की लोकप्रियता मापनी हो तो उसका व्हाट्सएप, उसका फेसबुक या फिर उसका वह चमचमाता स्टेटस देख लीजिए। बैकग्राउंड में किसी फिल्म का भारी भरकम डायलॉग, सामने खुद का स्लो मोशन वीडियो और ऊपर लिखा हम वही करते हैं जो दिल कहे दुनिया नहीं। ऐसे स्टेटस देखकर लगता है मानो दुनिया का पूरा भार इन साहब के कंधों पर ही टिका हो। एक पोज बदला, 5 इमोशन बदले, 10 सेकंड का वीडियो और 100 किलो का एटीट्यूड। अब तो भक्ति भी स्टेटस फ्रेंडली हो गई है। मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान से पहले मोबाइल कैमरा सक्रिय हो जाता है, सिर झुकाने से पहले कुमेरा को झुका दिया जाता है। ऐसे ऐसे भावुक वीडियो बनते हैं कि लगता है कभी भगवान खुद कमेंट कर देंगे, दर्शन अच्छे थे बेटा, अब चाहे तो कुछ मांग भी ले। भगवान भी सोचते होंगे चलो कोई अपने मन से में नहीं आया, भर फॉलोअर्स के लिए ही सही, आदि भक्ति तो पूरी हो गई। पहले लोग डायरी में मन की बातें लिखते थे, उन शब्दों में सच्चाई होती थी, संकोच होता था, थोड़ी शर्मिंदगी भी कि कोई पढ़ न ले। अब वही भावनाएं कैप्शन में बदल गई, खुली धुली हुई और लाइक की भूख में पगी हुई। पहले लोग आईने में चेहरा देखते थे बिना फिल्टर बिना बनावट, अब कैमरे में फिल्टर लगा व्यक्तित्व निहारते हैं। फोटो खींचने से पहले चेहरे के विचार बदल जाते हैं। और दिलचस्प बात ये, जो असल जिंदगी में किसी को आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाते हैं, वह सोशल मीडिया पर लोगों की नजरें झुकवाने में माहिर होते हैं। कभी कभी मन पूछता है अगर ये स्टेटस न होते तो लोग अपना दम, अपना मूड और अपनी शोहरत किसे दिखाते, क्योंकि आजकल ऑनलाइन रहना जरूरी हो गया है, उपस्थिति रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि ऑफलाइन जिंदगी में शायद देखने वाला कोई नहीं बचा और यही स्टेटस आज की दुनिया की नई पहचान बन गए। साथियों स्टेटस बुरे नहीं है, बस उनकी जगह बदल गई है। जो दिल की डायरी होते थे अब वो दुनिया की दीवारें बन गए हैं, और जो भावनाएं निजी होती थी वो पब्लिक प्रॉपर्टी। तो अगली बार कोई दमदार स्टेटस देखे एक पल ठहरिएगा, हो सकता है वो किसी की खुशी नहीं सिर्फ उसकी खामोशी को ढकने की कोशिश हो। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ताजा व्यंग है, मैं आपको बताना चाहूंगा, और जो एक ताजा अनुभव भी है और एक हकीकत भी है, सच्चाई पर आधारित है ये। संभल कर चलिए यमराज तो तैयार बैठे हैं। बात अभी अभी है, मैं सुबह सुबह युवाश को स्कूल छोड़कर लौट रहा था कि एक ट्रक ने मेरी बाइक को ऐसे ठोकर मारी जैसे जैसे बचपन से ही सपना था कि किसी दिन सड़क पर दौड़ते दौड़ते एक आदमी की सांसें रोक दे। शुक्र है ईश्वर ने टाइमिंग ठीक रखी, नहीं तो ट्रक वाले की महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती। यह घटना अपने आप में कम अद्भुत नहीं थी, पर असली कमाल तो मेरे विचारों का था। ठीक उसी समय मैं एक व्यंग्य सोच रहा था उन तेज रफ्तार वीरों पर जो सड़कों को ओलंपिक ट्रैक समझकर दौड़ते हैं। 2 दिन पहले ही सड़क पर एक दिलचस्प किस्सा हुआ। मैंने कार में सफर कर रहा था और सामने वाली कार ऐसी कोशिश कर रही थी जैसे वह ट्रैफिक नहीं ओलंपिक क्वालिफायर चल रहा हो। मेरे चालक साथी को मैंने कहा भाई धीमा चलाओ, जाने दो उस भाई को, कहीं सुबह सुबह उसकी पदक तालिका न बिगड़ जाए। वह आगे निकला भी और कुछ मीटर बाद गाड़ी साइड में खड़ी कर दी, ऐसा खड़ा हुआ जैसे विश्व रिकॉर्ड बनाकर अभी अभी मीडिया से बातचीत करने वाला हो। इसी दृश्य को ध्यान में रखकर शीर्षक मेरे दिमाग में आया संभल कर चलिए यमराज तैयार बैठे हैं, और ईश्वर शायद ऊपर से मुस्कुराकर कह रहे होंगे बेटा तुम तो सिर्फ सोच रहे हो, मैं आधे अधूरे विचारों पर भी व्यवहारिक प्रशिक्षण देता हूँ, पहले ये समझ लो फिर कलम उठाना। दूसरा चमत्कार यह था कि सुबह सामना आया था जिसमें किसी व्यापारी से मिलना हुआ और दुर्घटना कहाँ हुई, उसी व्यापारी की दुकान के सामने। ऐसे संयोग अगर फिल्मों में दिखा दिया जाए तो दर्शक कह देंगे अरे छोड़ो इतना भी ओवर मसाला मत डालो, लेकिन जीवन निर्देशक बड़ा चतुर है, वह ड्रामा भी देता है और मैसेज भी, वह भी बिना टिकट के। और सड़क पर चलने वालों की बात, वे इतने सिद्ध होते जा रहे कि अगर यमराज खुद घोड़े पर उतरकर सलाह देने आ जाए तब भी ये लोग हॉर्न बजाकर कहेंगे हटो भाई रास्ता रोको मत जल्दी पहुंचना है। दुर्घटना के बाद ट्रक वाला अपने वाह में था, सड़क अपनी धूल में थी और मैं अपनी किस्मत पर हंस रहा था। आखिर इतना बड़ा प्रैक्टिकल किसे मिलता है अपने ही व्यंग का, अब तो लगता है कि पीछा छुड़ाना मुश्किल है, व्यंग भी लिखना है और सड़क पर अपना अस्तित्व भी बचाना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है अगर जल्दी में है तो जरा धीरे चलिए, यमराज कहीं नहीं गए हैं, बस आजकल फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि एक्सीडेंट के ठीक बाद मैं सड़क के किनारे खड़ा सोच रहा था
आखिर हम लोग सड़क पर चलते कैसे हैं, जैसे किसी ने जन्म प्रमाण पत्र पर ही लिख दिया गया हो कि बेटा बेड़ा होकर तू ट्रैफिक का

0: उस्ताद बनेगा, कोई हेलमेट को सिर सजाने की चीज समझता है, कोई मोबाइल को रियर व्यू मिरर की जगह लगा देता है, कोई मानो रोजमर्रा से रेस लगाकर जीत रहा हो। और इनसे भी हर एक का पूरा भरोसा रहता है कि हादसे किसी और के साथ होते हैं, हम तो सिर्फ सस्पेंस बढ़ाने के लिए सड़कों पर निकले हैं। इसी आत्मविश्वास का लेवल देखिए, अगर सड़क पर 2 सेकंड रुक जाए तो लगता है उनके सम्मान पर हमला हो जाएगा।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए आगाज करते हैं हम जोली फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे स्वरों में गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

राजेंद्र कृष्ण का शब्दबद्ध किया ये गीत सुनिए, जिसकी धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने इसे गाया है। फिल्म का नाम सच्चाई।

नौशाद का संगीतबद्ध किया गीत अब सुनिए, जिसे लिखा है रजिंदर कृष्ण ने, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने इसे स्वर दिए हैं। गवार फिल्म का नाम।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं गोपी फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। रजिंदर कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4,
2: बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला।
3: गोपी, वाटर स्टैंड, राइट हैंड, बंदूक बैंड, टीन फटे।

देख मेरा ठोपा, ये देख मेरा ठोपा, ये देख मेरा कुंभा, ये देख मेरा सोपा, है मेड इन जापान, जेपीओ एन जापान। ये फाइन फाइन सूटा, ये लांग लांग बूटा, ये पाइप वाला हुका, ये सूटा बूटा बूटा सूटा हुका बूटा, वेरी वेरी गुड।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए आज का, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीत इस फिल्म का नाम है और हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस
0: लास्ट ईयर। प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की

0: समाचार दिल्ली।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
5: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
6: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्याना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और

0: ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के रुख को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ते के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दोस्तों, जब घर से निकले तो हुजूम है, सोशल मीडिया पर जाएं तो शोर है, और जब तन्हा बैठे तो ढेर सारी फिक्र है। एक ऐसी ही सुबह जब मैंने खुद से पूछा कि आखिर चल क्या रहा है, तो अंदर से एक हल्की सी आवाज

भाई जिंदगी चल रही है दोस्त, बस तुम थोड़ा दौड़ ज्यादा रहे हो। सलाम नमस्ते और गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपकी दोस्त, आपके इस सुरीले सफर की हमनवा अस्मा खान, और आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल के साथ कार्यक्रम खुश दिल से। इस हसीन सफर में आज हम कहीं दूर नहीं जा रहे, बल्कि अपने ही अंदर थोड़ा गहरा उतरने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है एक बेहद प्यारा सा लफ्ज, जिंदगी।

दोस्तों, हम सब जिंदगी को ढूंढने कहां कहां नहीं जाते। किसी बड़े ओहदे में, नए मकान में, बैंक बैलेंस में या किसी की ख्वाहिशों में। पर सच बताएं, जिंदगी किसी मंजिल पर रुककर आपका इंतजार नहीं कर रही। जिंदगी तो इस रास्ते का नाम है जिसके आप मुसाफिर हैं।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
9: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
10: दोस्तों, आप जो भी गाड़ी चलाते हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप जो किचन में चाय उबलने का इंतजार कर रहे हैं, या आप जो बालकनी में बैठकर ठंडी हवाओं को महसूस कर रहे हैं, यही तो जिंदगी है।

दोस्तों, हम आने वाले कल के अंदेशों से इतने मसरूफ हो गए हैं कि आज को तो जीना ही भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि जब कुछ मुकम्मल होगा तब हंसेंगे, पर वक्त कभी मुकम्मल नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। रास्ते में किसी बच्चे को देखकर मुस्कुरा देने में जिंदगी है, और सबसे बढ़कर ये जिंदगी खुदा की दी हुई एक नायाब सौगात है।

दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर उम्मीद की एक सुर्खी लिखी है। लेकिन हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना। गुजरे हुए कल के मलाल और आने वाले कल की जस्तजू में हम आज में जीना ही भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी किसी बड़ी खुशी के इंतजार का नाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे लम्हों को शिद्दत से महसूस करने का नाम है।

0: बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: इसी के साथ दीजिए इजाजत आपकी दोस्त अस्मा खान को, फिर मिलने के वादे के साथ, तब तक के लिए अलविदा। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत, रमजान खान व साथियों की आवाज में।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना,
1: फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
2: और क्या?
4: मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली, घोषणा पत्र 2026 जारी। सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प दोहराया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत सभी 309 निकायों के लिए वोटों की गिनती कल की जाएगी। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती आज। जैसलमेर के रामदेवरा में ध्वजारोहण के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई। और सक्रिय मॉनसून के असर से कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर आज प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में चल रहे 18वें ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज है। सम्मेलन में कल पहले दिन ब्रिक्स देशों के समर्थन से नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी इस दौरान कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: इससे पहले कल भारत मंडपम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, वन रिदम, मैनी कल्चर्स के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत सभी 309 निकायों के लिए वोटों की गिनती कल की जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि मतगणना शांतिपूर्ण और समयबद्ध तरीके से कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी के पर्व को देखते हुए मतगणना की व्यवस्थाओं में आंशिक बदलाव किया गया है। जयपुर नगर निगम की मतगणना भवानी निकेतन कॉलेज में होगी, जबकि जिले के अन्य 18 निकायों में संबंधित निकाय मुख्यालय पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतगणना होगी। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना के दिन विजय जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। हालांकि प्रत्याशी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने घर पर समर्थकों के साथ जश्न मना सकेंगे। आयोग के अनुसार भड़काऊ नारों और माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए विजय जुलूस पर रोक लगाई गई है। जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना कल से ड्रोनाथॉन 2026 आयोजित करेगी। 3 दिन के इस ड्रोनाथॉन में भारतीय उद्योग जगत की कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों का विकास, परीक्षण और प्रदर्शन करेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को मानव रहित हवाई प्रणालियों और ड्रोन रोधी प्रणालियों में अपनी क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। ड्रोनाथॉन के जरिए मौजूदा जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान तलाशने और उनके युद्धक प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलेगी। आयोजन को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में आज लोक देवता बाबा रामदेव मेले की विधिवत शुरुआत हुई। भादवा शुक्ल द्वितीया पर बाबा रामदेव की जन्म जयंती के अवसर पर भरने वाले इस मेले का आगाज आज सुबह पंचामृत अभिषेक और शिखर पर ध्वजारोहण के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश भर में प्रसिद्ध इस मेले में राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु बाबा रामसा पीर के जयकारों के साथ पहुंच रहे हैं।
2: मेले में देश भर से आए श्रद्धालुओं को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं मेला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम दर्शन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई है। कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। चिकित्सा, पेयजल, विद्युत, सफाई, यातायात, पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं

0: को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। मेले की प्रत्येक गतिविधि पर प्रभावी निगरानी के लिए क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विद्युत विभाग द्वारा मेले में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: बाबा रामदेव के प्राकट्य दिवस पर जोधपुर के मसूरिया स्थित गुरुवाली नाथ जी की समाधि पर भी मेला भर रहा है। बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा सहित सभी जिलों में बाबा रामदेव जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के उमड़ते सैलाब को देखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व कल देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पर्व को देखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। यातायात पुलिस ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। श्रद्धालुओं को जाम से राहत और पार्किंग की जानकारी देने के लिए पहली बार विशेष QR कोड जारी किया गया है। इसे स्कैन कर नजदीकी पार्किंग, यातायात डायवर्जन और लाइव ट्रैफिक की जानकारी ली जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पावन अवसर लोगों को इन मूल्यों को मजबूत बनाने और अधिक करुणामय तथा सौहार्दपूर्ण विश्व के निर्माण में प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों से सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के गुरु गद्दी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहने से कल राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई। अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, कोटा, दौसा और माउंट आबू में हल्की बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। आज कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर समूचे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट है। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बरसात का अनुमान है। इस दौरान राज्य के शेष हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से राज्य में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। इसका असर 16 सितंबर तक बने रहने की संभावना है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों यानी जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बरसात होने के आसार हैं। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। 7 बार का चैंपियन भारत ग्रुप ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी। सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प दोहराया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत सभी 309 निकायों के लिए वोटों की गिनती कल की जाएगी। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती आज। जैसलमेर के रामदेवरा में ध्वजारोहण के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई। और सक्रिय मॉनसून के असर से कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर आज प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, तलत अजीज व साथियों की आवाज में।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड

0: भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा।

9 बजे की शोरदा आ गई सुबह सुबह। मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आप सभी को रेणु बंसल का नमस्कार। आज हमारी फनकार हैं अभिनेत्री महिमा चौधरी।

0: दोस्तों, ये गाना फिल्म परदेस का था और परदेस महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी। वो शोमैन सुभाष घई की खोज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष घई जब भी किसी अभिनेत्री को पहली बार हीरोइन बनने का अवसर देते हैं तो उसे एक नया नाम भी देते हैं और ये नाम हमेशा म से शुरू होता है और महिमा के साथ भी यही हुआ। माता पिता का दिया हुआ नाम ऋतु चौधरी घर में ही रह गया और फिल्मों के लिए महिमा मंडित हुआ नया नाम महिमा। लेकिन इस बात की पूरी जानकारी स्वयं महिमा चौधरी के स्वर में।
1: क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो ऋतु चौधरी ही दूं कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। मुझे वैसे ही ऋतु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही चार चार ऋतु थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है, आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम ऋतु रख दिया, तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कोई भी नाम, कोई भी फर्म जब शुरू की है, जैसे मुक्ता आर्ट्स फिल्म्स, वो सक्सेसफुल रही है। टेलीविजन पे मैंने दृष्टि शुरू की थी, वो एकदम फ्लॉप हो गई, तो एम से नाम रखो तुम। तो मेरे जो पापा हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटियों का नाम है रिधिमा महिमा। मैंने कहा महिमा कैसा है, ही सेइंग इट्स नाइस, तो फिर हमने महिमा रखा।
2: जैसे

0: अपने देश से प्रेम करने वाली महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हॉस्टल में रहने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता शुरू से ही रही। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो नेपाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और बोलती भी हैं।
1: दार्जिलिंग को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हु त्यो त्यही दार्जिलिङ मा सिकेको। अन्त हाम्रो नेपाली भाई बहन को बटै सिकेको। अन्त मेरो सबै म्यानरिजम्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लभ अल्सो इज आई लर्न फ्रम द नेपालीज पिपल। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
0: महिमा चौधरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, पर उनका करियर फिल्मों में बनेगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, शुरुआत मॉडलिंग से हुई और उन्होंने एक शीतल पेय का विज्ञापन किया। बस यहीं से वो लाइमलाइट में आई और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। फिल्म परदेश में गंगा के रोल में उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री भी मिली और फिल्म की कामयाबी से शोहरत भी मिली और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। फिल्म परदेश के बाद महिमा की बहुत दिनों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बॉक्स ऑफिस पर वैसी भीड़ जुटा पाती जैसी कि परदेश ने जुटाई थी। लेकिन महिमा के नाम की लगन लोगों को उनकी फिल्में देखने के लिए खींच ही लाती।

महिमा चौधरी की जितनी फिल्म्स अब तक रिलीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार कास्ट वाली हैं। फिर भी हर फिल्म में महिमा ने अपने रोल के साथ न्याय तो किया ही है, अपनी अदाकारी के तीरों से देखने वालों को घायल भी किया है।

दिखने में शोख और चंचल महिमा चौधरी स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत से लोगों में घिरे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब सेट पर आती हैं, तो रोल जैसा भी हो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सरस्वती की भूमिका में उन्होंने लोगों को रुलाया भी तो बहुत हंसाया भी।

महिमा चौधरी के संवेदनशील अभिनय से सजी एक और बहुत प्रभावशाली फिल्म थी दिल क्या करे। ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपनी गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्ची का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।

रीमा चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कृति

0: कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं, इसमें एक ऐसे विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा।
1: राम हो।
0: फिल्म धड़कन आई सन 2000 में, इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के

महिमा चौधरी के अभिनय से सजी अगर फिल्म लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनय था। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है।

बात करें अगर फिल्म बागबान की तो उसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। सलमान खान की वो संस्कारी पत्नी बनी थी और इस रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी करगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेश में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था जहां पिया वहां मैं। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गई। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओ, ये था आज के फनकार कार्यक्रम जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइलेंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में जानी मानी गायिका दीपाली सहाय साझा कर रही थी मुंबई के संघर्ष की कहानी और भी तमाम दिलचस्प बातें। तो चलिए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
3: उस महफिल में कितनी तारीफ मिली,
4: उस
3: जहां
4: महफिल में
3: फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो आर्ट से प्यार करते हैं, जिन्हें कैफी आजमी से प्यार है, जो थिएटर की दुनिया की बड़ी हस्तियां हैं।
4: वो जो महफिल हुई ना, उसके बाद बाबा आजमी सर ने जो बातें बोली थी वो मेरे साथ आई, मेरे साथ थी, मेरे अंदर बात तो चलने लगी थी स्वयं से कि ये क्या, ये आदमी जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है ये या फिर हमको गुमराह करने का कोई नया साजिश रच रही है दुनिया की, ये हम कर क्या रहे हैं। मतलब हम मुंबई से मुंबई आते हैं गाने के लिए और somehow एक डॉक्टर बोलता है गाना नहीं गा सकती और फिर हमको लगता है अब जीवन में क्या करें, चलो एक्टिंग का ऑफर सामने से आ जाता है, एक्टिंग करने लगते हैं, फिर लगता है नहीं डायरेक्टर बनना है, डायरेक्शन पढ़ के हिंदुस्तान के सबसे अच्छे जगह से डायरेक्शन पढ़ के हम निकलते हैं। एक साल दो साल अभी डायरेक्शन में काम ही कर रहे थे कि फिर से ये बोलते हैं नहीं गाना गाना चाहिए आपको। तो मेरा लाइफ बहुत टर्मोइल में चल रहा था उस वक्त। उस महफिल उस रात जो हुआ जब जावेद अख्तर और शबाना आजमी और बड़े बड़े दिग्गज उस महफिल में बैठे थे और जब उन लोगों की नजर में अपने लिए तारीफ देखी, शब्दों में नहीं,

0: नजर में, उनके प्रेजेंस में था कि उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया था। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको इतनी अच्छी लगती है कि आपको बोलने का भी मन नहीं करता है।
1: बिल्कुल, और वो महफिल ही ऐसी होती है,
0: वो महफिल होती भी उस तरह की ही होती है। वो तो उनके पूरे हाव भाव में एक वेलकमिंग एटीट्यूड था कि बेटा तुम सही रास्ते हो अगर तुम ये करो तो। पर कोई यहाँ पे खुल के राय नहीं देता है, क्योंकि जो बाबा आजमी सर ने मेरे साथ किया वो बहुत कम लोग करते हैं। इनका मानना है कि भाई जियो और जीने दो, और हर कोई अपना रास्ता खुद तलाशता है। आप उसको नहीं सिखा सकते हैं।
1: तो बाबा आजमी ने आपको,
0: उन्होंने तो भैया एक हाथ पकड़ के उस राह पे जबरदस्ती लेके गए कि ये आप कर क्या रही हैं अपने जीवन के साथ। ये उनका मानना था उस वक्त जब हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। और फिर उनके कहने की वजह से आई टुक इट वेरी सीरियसली, और हम सोचे कि अब रियाज शुरू किया जाए। बचपन का वो काम जो हम हमेशा से करते थे, रियाज जब शुरू किए तो पता चला गले का जो चाम है
1: वो फ्लैट हो
0: वो
1: गया,
0: जा चुका है। वो एक कार्यक्रम के लिए निकल जाए वो अलग बात है, बट अब गला दर्द होने लगता था लंबा गाने पर, यू नो। तो 2 साल तो हमको सिर्फ रियाज में लग गया, चुपचाप, न कोई काम न कोई पैसा। पता नहीं क्यों कैसे ये हुआ मेरे साथ कि वो जो फेज था उसमें एक बार फिर से माँ बाप को डर लगा कि ये तो यू नो फिर करियर, फिर कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है, ये लड़की कहाँ जाएगी। तो उस समय भी सुझाया गया कि बेटा अभी भी मौका है, एक अटेम्प्ट बचा है, यूपीएससी निकाल लोगी तो।
1: अरे बाप रे,
0: 2014 की बात है, एफटीआई के बाद। और पैकिंग शुरू हो गई कि चलते हैं दिल्ली, एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, और ये तो तय था कि एक अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और अभी एक ही अटेम्प्ट बचा था एज के हिसाब से। तो पैकिंग जब शुरू हुई, और तब मेरी दीदी की शादी हुई थी जस्ट, मेरे जीजा जी हमारे जीवन में आए, और उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव ये, काफी पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव है कि जब इतने साल दे दिए, 2007 से 2014 आ गया, और तुम अभी तक हार नहीं मानी हो तो अब भी नहीं मानो, रुको करो, क्योंकि अब भरोसा नहीं था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गाना तो छूटे हुए बचपन में छूट गया गाना ना। बट वो वही तो है कि मेरे अलावा मेरे आसपास के लोग भी बड़े कमाल के मिले हमको, मेरे अलावा सबको मेरे अंदर विश्वास था कि ये कर सकती है। और फिर बाबा आजमी जैसे मिले हमको, यू नो, उनका जब सुझाव मिला, जीजा जी भी बोले कि नहीं तुम कर सकती हो, शुड स्टॉप, वेट, मत जाओ दिल्ली, मत करो यूपीएससी, तुम इसके लिए नहीं बनी हो, तुम वहां जहां हो, तुम जिस चीज के लिए बनी हो तुम वहीं हो।
1: वाह।
0: और फिर हम 2 साल जेन्युइनली मेहनत किए, हम रियाज किए। डिप्रेशन भी आया उस फेज में, क्योंकि काम नहीं है, जो काम ऑफर हो रहा है आप उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि आप दो जगह नहीं जा सकते एक साथ। अगर हम शूटिंग करेंगे, अगर डायरेक्शन में असिस्ट करेंगे, तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, फोकस तो करना पड़ेगा। सो दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फेज।
1: कैसे निराशा का सामना किया?
0: इस बार हम टूट गए बिल्कुल, इस बार ऐसा लगा कि जीवन ठीक नहीं है। तो वो डिप्रेशन ही था, और ये इस बार ये दीपाली नेगेटिव हो गई थी बहुत ज्यादा।
1: कितना लंबा चला
0: ये चला? कुछ एक 1.5 साल।
1: किसकी मदद मिली?
0: माँ बाप फिर से, क्योंकि अब वो स्थिति थी कि पैसे भी थे, मतलब पिछले इतने सालों में तो पैसे अच्छे से कमाए थे, तो पैसे की कमी तो नहीं थी, ये डर नहीं था कि मुंबई में जीवन यापन कैसे होगा। पर क्योंकि वो राह, वो जीवन, और फिर जीवन में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे, वो सब आपको एक अलग एहसास देते हैं। और हम उसी फेज में पहुंच चुके थे जहां पे जीवन ने आपको बहुत सारे एहसास के दर्शन करा दिए थे। हमको याद है कि एक गाड़ी भी हम बुक कर दिए थे, नई गाड़ी, मेरे पास जो गाड़ी थी पिछले कई सालों से उसको हटा के नई गाड़ी भी लेने का प्लानिंग हो गया। बट एक दिन हमको याद है कि अकेले थे हम, और दूध उबल के मेरे सामने गिर रहा था और हमको समझ नहीं आ रहा था,
1: अपने ख्यालों में गुम थे,
0: अपने ख्यालों में, और मेरी आंखों से हम वो देख रहे थे कि ये दूध उबल के गिर रहा है, और हम गिरने दे रहे थे, और नमक था हाथ में क्योंकि चीनी समझ के डालने जा रहे थे।
1: अरे बाप रे।
0: तो वो यू नो दैट मोमेंट, उस वक्त हमको लगा कि ये तो हम है ही नहीं, इतने लॉस्ट तो हम है ही नहीं, आई एम वेरी फोकस्ड एज अ पर्सन, हम इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, बहुत मोमेंट में रहने वाले हैं, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब यू नो आई वाज नॉट एबल टू हैंडल वो जो ब्लैंक जीवन था ना, कि हम काम करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे क्योंकि कोई बोल रहा है कि हम अच्छा गाते हैं, और हम गाते भी अच्छा है, पर क्या हम ये कर पाएंगे? मेरी तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर से जान पहचान भी नहीं है, हम कैसे करेंगे? डायरेक्शन में क्या है तो हम स्पॉट

0: बॉय बन के भी नीचे से भी ऊपर उठ सकते हैं. एक्टिंग हम छोड़ चुके हैं, एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि वो एक ही चीज कराते हैं, रोज रुलाते हैं, रोज किसी से वैम्प है तो बदमाश ही है. वो मेरा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है. सिंगिंग हम किए नहीं कभी, डायरेक्शन अब कर नहीं सकते क्योंकि वहां जितना इन्वेस्टमेंट लगता है वो दिन और रात बराबर होते हैं वहां पे. अगर हम वो करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे. पर क्या हम सच में सिंगर हैं?
1: बहुत बढ़िया सवाल थे.
0: हाँ, क्या सच में मेरे में ये योग्यता है कि हम एक ऑलरेडी सेट करियर जिसको हम इन्वेस्ट करके बना चुके हैं वो छोड़ के हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन चले आए क्या? क्या हम गा पाएंगे कभी? क्या सच में मेरा गला ठीक हो गया है?
1: मेरा दिमाग घूम गया.
0: हाँ. और फिर हम, आई रिमेम्बर जब वो दूध वाला इंसिडेंट हुआ तो हम अपने पापा को फोन किए और हम बोले पापा कुछ गड़बड़ है. तो वो घबरा गए, क्या गड़बड़ है? हम बोले पता नहीं कुछ गड़बड़ है, हमको घर आना है. बोले आओ, कितने दिन के लिए आओगी? उनका पहला ये सवाल होता था कि आ रही है तो फिर जल्दी नहीं चली जाए. तो हम बोले पता नहीं, 6 महीना 1 साल. तो उनको लगा कुछ तो बहुत मेजर हो गया है इसके साथ,
1: क्योंकि ये ऐसे
0: बात नहीं करती है. और फिर हम घर पहुंचे और वो 1 साल बहुत परेशान रहे. मेरे पिताजी को ये भी था कि शादी हो जाए इसकी. उनको, माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि कंपेनियनशिप होता तो शायद ये इतनी परेशान नहीं होती. एक साथ होता है तो ढाड़स बधा रहता है आपके पास. वो भी कमी होगी, आई एम श्योर वो भी कमी थी मेरी लाइफ में. बट उससे ज्यादा कमी ये थी कि हमको क्लैरिटी ही नहीं था कि हमको चाहिए क्या, क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए था. किशोर कुमार के भक्त हैं हम, तो हमको किशोर कुमार बनना था.
1: गजब.
0: आई कुड एक्ट ऑल्सो, आई कुड सिंग ऑल्सो, आई कुड डायरेक्ट ऑल्सो. और किशोर कुमार का की भक्ति मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, पर ये नहीं पता था कि वो रास्ता इतना आसान नहीं है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये बहुत कठिन रास्ता है. और जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक काम करना है तो उसमें कितनी शिद्दत और मेहनत जाती है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: कितने सारे सैक्रिफाइसेस जाते हैं, कितना सारा डर होता है.
1: कैसे अपने आप को संभाला और इस 1 साल में खुद को वापस पटरी पे लाया?
0: पता नहीं वो कैसे, वो माँ बाप के पास वापस आना ही सही डिसीजन था. क्योंकि उस वक्त मुंबई में अकेले रहना मेरे लिए ठीक नहीं था. तो थैंकफुली आज डिप्रेशन के ऊपर इतनी बातें होती हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं और खुल के ये बातें हो रही हैं. तब तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं था कि ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकता है.
1: हम तो इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद,
0: राय, मदद, हमको ये अंदाजा नहीं था. हमको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत एहसास, टूट रहे हैं हम अंदर ही अंदर. ये सब समझ ही नहीं था हमको. बस पता था कि जब भी हम हारते थे तो मेरे माँ बाप चाहिए हमको. तो बस हम, दैट वॉज अ गुड डिसीजन.
1: लेकिन ये कितनी प्यारी बात है कि एक लड़की दुनिया के तमाम गमों और तमाम थपेड़ों से हार के अपने माँ बाप की गोद की तरफ लौटती है.
0: ये
1: दुनिया की सबसे प्यारी बात है.
0: सबसे प्यारी बात है. और ये मेरा सौभाग्य है मेरे माँ बाप ऐसे हैं. मतलब आज तक हम अपने, मेरे पिताजी भी तो वही मर्द है ना जो इस समाज में जीते हैं. उसी समाज का हिस्सा है. पर मेरे पिताजी के मुंह से आज तक हम ऐसा कुछ नहीं सुने कि बेटा तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर दी. कितनी बड़ी बात है ये.
1: बिल्कुल.
0: वो भी तो मर्द ही है ना.
1: बिल्कुल.
0: शायद मेरा पति ये बोल दे, पर मेरे पिता ने आज तक ये नहीं बोला है. थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है. पर आई एम जस्ट सेइंग कि वो उस समाज से निकला हुआ एक मर्द जिसने अपने पिता से बहुत मार खाई है बचपन में, उसने आज तक एक उंगली से भी नहीं छुआ है हम लोगों को. आप जनरली वही पास ऑन करते हैं ना, जेनरेशनल, जो आपने देखा सीखा. आपको यही पता है, बच्चे को टेम करने के लिए, बच्चे को वश में रखने के लिए मारना पड़ता है. और मेरे पिताजी ने आज तक हम लोग को, मतलब डांटा भी नहीं होगा शायद. बहुत दुखी होते थे तो बोल देते थे कि दुख हुआ बेटा ये सुन के कि तुम ऐसा की, तो ऐसे माँ बाप के पास आप वापस नहीं जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपके हर ऊट पटांग सपने पे खड़े हैं पंख लेके कि ठीक है बेटा चलो पंख पहना देते, जाओ उड़ो. बाइक चलाना है उड़ो, गाड़ी चलाना है उड़ो. बचपन में हमारे पापा का, हमारा सरकारी क्वार्टर था जो उसमें कैंपस था, वहां पे पापा मेरे सब्जियां उगाते थे, फूल गोभी, बंदा गोभी, मूली, गाजर. तो हमें वो भी रोपना होता था. आप देखिए हमारा कितना मल्टी पर्पज स्टूडियो है जैसे ये, कितना हमारा मल्टी टास्किंग ग्रोथ हो रहा था. हमें खुद का काम खुद करना है. तो आपके माँ बाप, और हमको नहीं पता कि वो लोग ये कॉन्शियसली कर रहे थे या वो ऐसे ही है, आई डोंट नो. क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे बाकी के माँ बाप थे. ये

0: क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद दीपाली वापस आ गई।
1: बिल्कुल, पूरी तरह से।
0: और मुंबई में जिंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार।
1: तैयार। और ये 2016 की बात है जब हम बहुत बुरे स्टेज में थे, 15-16, और 15-16 वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट 2017 में वापसी हुई मुंबई में, वापस आए, घर बदला, यू नो, जिस घर में रह रहे थे वो घर चेंज किया और डिसाइड किया कि भोजपुरी भाषा में कुछ करना है। क्योंकि ये जो एक साल हम घर पे रहे, और क्योंकि अब हम भोजपुरी का मेरा एक्सपोजर हो गया एक्टिंग की वजह से, तो समझ आया। और इस बीच एक बहुत ही कमाल का शो नेटफ्लिक्स पे आता था, अब नहीं आता है, सतरंगी नाम का एक शो हुआ मेरे जीवन में। इसमें आई वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो। ये कुछ ही दिन चला, ये कुछ 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का था, पर एक एपिसोड का मतलब एक राज्य। तो समझिए कि फ्री में हमने पैसे के लिए ये काम किया था, बट ये एक्सपीरियंस सुन के लगा कि अगर पैसे देखेंगे तो काम, तो ये एक्सपीरियंस चला जाएगा। इसमें एक मौका ये था कि आप अलग अलग राज्य में जाते और वहां के फोक म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करेंगे एज अ होस्ट।
0: वाह वाह वाह।
1: तो FTII का जो टाइम चल रहा था उसी वक्त ये शो आया था। तो आई डिड इट, और एक महीने का ही ट्रैवल था जो ब्रैकेट्स में था, एक एक हफ्ते का, तो वो हो गया। और इसकी वजह से हम दुनिया के, हिंदुस्तान के 13 अलग अलग स्टेट्स में गए और वहां के फोक म्यूजिक को सुने। और जब वो लिस्ट आई थी कि हम लोग को जिस जिस स्टेट जाना है, उसमें बिहार का नाम नहीं था। और ये बात हमको बहुत चुभी थी कि मतलब हम लोग इस योग्य भी नहीं है। झारखंड है,
0: झारखंड था,
1: यूपी है,
0: तो बिहार क्यों छोड़ दिया था।
1: मध्य प्रदेश है पर बिहार नहीं है। अब वो क्यों नहीं है हमको नहीं पता। और ये बात हम पूछे भी डायरेक्टर से कि बिहार क्यों नहीं है, तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ कोई बहुत सारे लोग हैं नहीं जो फोक करते हैं। ये बात हमको बहुत चुभी, ये बात सच है। मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उस शो का पर्पस ये था कि जेनरेशन नेक्स्ट उस फोक विधा को कैसे आगे ले जा रहा है, तो बोला वहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है ना फोक लैंग्वेज में। और ये बात मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि बात तो बिल्कुल सही है। मेरी अपनी भाषा है भोजपुरी और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने बन रहे हैं, पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा कौन। हम गा सकते हैं, पैसा मेरी प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन है ये जहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, देवी की कृपा से कलाकार हैं हम, और मेरी सोच ये है कि ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो या बनी जई हो बनी के जोगिनियार हो रामा पिया के करनवा, ये गाने मेरी जनरेशन को पता भी नहीं है कि सुमन कल्याणपुर ने या लता जी ने भोजपुरी के लिए गाया है, या भोजपुरी में जो मेरी नानी गाती थी या अम्मा गाती थी, दादी गाती थी, वो गाने, उन गानों में अश्लीलता नहीं होती थी। जब हम ही को इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकी लिस्ट में मेरा नाम होना भी नहीं चाहिए।
0: ओह, ये बहुत बड़ा झटका था,
1: बहुत बड़ा झटका था। सो दिस इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब भोजपुरी के लिए कुछ करना है। और वहां कुछ ऐसा सामंजस्य बन गया जीवन में कि एक हिंदी कविता का एक YouTube चैनल है, उर्दू पोएट्री,
0: मनीष गुप्ता का
1: उनके लिए एक किस्मत से एक गजल आपकी याद आती रही रात।
0: अच्छा, ओ हो हो हो हो, वो आपने किया था।
1: जी
0: देखिए मनीष गुप्ता बहुत प्रिय दोस्तों में से एक है।
1: जी, तो उनके लिए ये, उनके चैनल के लिए ये, और क्योंकि हम यू नो जस्ट उस फेज से निकले थे, वो जो मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो वो गाना जो है यूट्यूब पे वीडियो में है, और आज भी हमको
0: खूब चलता है, वो
1: खूब चलता है हमको आज भी बहुत।
0: ओरिजिनली छाया जी ने गाया है।
1: जी,
0: और मजेदार बात यह है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही।
1: ओ, कैसा ये सर्कल है। हाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि यूट्यूब का क्या पावर है। मतलब मेरे जैसा एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई

0: नामो निशान नहीं है संगीत के जगत में, वो लड़की एक किसी दूसरे के चैनल के लिए एक गाना गाती है, वो भी बैठ के बिना म्यूजिक रो रही है, गा रही है और रो रही है, और वो वायरल हो जाता है, और हमको फेसबुक पे और हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको लोग पकड़ के बोल रहे हैं, जो पहचान ले रहे हैं, आपको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपके और गाने कहाँ सुन सकते हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
1: और मैंने क्या समझा पता है?
0: हाँ,
1: किसी एक्ट्रेस ने गाया है। मुझे नहीं मालूम था कि हम इस तरह से एक मेज पर बैठे होंगे और विविध भारती के लिए बातें कर रहे होंगे। मैंने वो वीडियो बहुत देखा है।
0: अच्छा।
1: और बल्कि मैंने भी मनीष के लिए काम किया है, कुछ
0: अच्छा।
1: कुछ कविताएं पढ़ी हैं।
0: ओ हो, तो हमको तो मिलना ही था सर। तो उसकी वजह से ना हमको सोशल मीडिया का पावर समझ आया कि अब जो है आपको एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करना है, अब आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, उठाइए अपना कैमरा, अपने आप को शूट करिए और डाल दीजिए। क्योंकि अगर आपकी याद आती रही जिस तरह से लोगों के बीच गया, उसमें तो कुछ नहीं था, ना हम खूबसूरती से सज के बैठे हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैकड्रॉप है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक लड़की, नॉर्मल सी लड़की घर के कपड़ों में बैठ के गा रही है और एक आदमी ने उसको कैप्चर कर लिया
1: दो कैमराज
0: लगा के। बोले अगर ये पॉसिबल है तो कितना स्कोप है मेरे पास, एंड आई कैन डू दिस विद माई ओन लैंग्वेज। भोजपुरी में अगर हम सेम चीज रिक्रिएट कर दें और लोगों को समझा के कि ये गाना क्या कहना चाहता है, अगर हम समझाएं अंग्रेजी में, तो जो यंग क्राउड है वो कनेक्ट करेगी कि अरे ये भोजपुरी भी बोल रही है लेकिन इंग्लिश में समझा रही है। तो जैसे हम कनेक्ट कर जाएंगे वैसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मनीष गुप्ता की वजह से मिल गए नीलेश मिश्रा। उनका चैनल आया था गांव कनेक्शन। उनको चाहिए थे लोकगीत,
1: वो बड़ी शिद्दत से तब ढूंढ रहे थे। ऐलान किया था,
0: तो उन्होंने जब ये ऐलान किया तो हम तो ताक में बैठे थे क्योंकि हम तो थे उनके फैन,
1: वो भी हमारे दोस्त।
0: अरे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने सामने से मैसेज कर दिया था आपकी याद आती रही, आपकी याद आती रही की वजह से हम थोड़े फोकस्ड हो गए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ये प्रोफाइल्स पे काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दें, बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब यू नो समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आपने बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर। तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको कोई पैसा तो देगा नहीं, ये बनाना प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा काम है, तो अगर व्हाट इफ आई नीलेश मिश्रा को ये आइडिया पिच करते हैं कि आप हमको अपने चैनल पे, वो ढूंढ रहे थे फोक आर्टिस्ट, तो लेकिन हम अपने अंदाज से गाना चाहते हैं, हम उसको गाएंगे पर वैसे नहीं जैसे लोग गाते आ रहे हैं, हम उसको समझाएंगे और फिर गाएंगे। एंड आई मेट नीलेश मिश्रा एंड वो बहुत खुश हुए इस कॉन्सेप्ट से, उनको लगा हाँ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंटल होगा, और वहां से भोजपुरी क्लासिक्स दीपाली सहाय की शुरुआत हुई थी।
1: क्या बात है, और वो खूब चला और पूरी दुनिया में धूम मचाई,
0: बहुत चला।
1: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज,
0: पार्किंग लॉट।
1: वो भी मजेदार है, उसमें तो आपने पता नहीं क्या क्या गाया है।
0: हाँ, उसमें तो
1: जब जो मर्जी आई है गाया है,
0: जब जो दिल में आया। और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे, जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे, कि तुम क्या गाती हो यार, कितना पुराना, कोई सुन, हम सुने भी नहीं है ये गाना तुम जो गाती हो।
1: और मुझे ना ये लगता था कि ये कौन लड़की है जो मतलब सीरियसली, ये बहुत अमेजिंग बात है, मतलब पार्किंग लॉट वाला जो पूरा मामला है, तो
0: ये दोनों पैरेलली शुरू हुआ
1: और ये इंस्टाग्राम की फीड में आते जाते थे और वो गूंजती हुई आवाज में गाने हम सुनते रहते थे, पर हमने ये सोचा ही नहीं कि ये
0: हाँ, ये
1: मतलब ये बहुत मजेदार है। मुझे ये आज ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से दीपाली के गाने सुनता आ रहा हूँ।
0: ये कमाल है, 2017 पार्किंग लॉट सीरीज शुरू,
1: और वो भी बहुत चली थी,
0: बहुत चला,
1: बहुत ज्यादा।
0: मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन हमको रहमान सर के लिए रिकॉर्ड करना था, तो अंदर से मेरे एक एहसास आ गया था कि शायद अभी हम इतने बह जाएंगे इस इमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 9 साल लगातार हम पार्किंग लॉट सीरीज की है, 9 साल से हम सोशल मीडिया पे लाइव गा के गाना डालते हैं, और आप विश्वास करिएगा मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरी आवाज रहमान सर तक पहुंच जाए, ए आर रहमान सुन ले हमको बस, और कोई तमन्ना ही नहीं थी मेरी,
1: और उन्होंने सुन ली उन्होंने क्या बताया, कहाँ, किस तरह से सुना?
0: उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू किया हमको।

0: अच्छा
1: 6 जनवरी जो मेरा जन्मदिन है
0: उनका भी
1: जन्मदिन है।
0: ये भी इत्तेफाक है।
1: दिलजीत दोसांझ का भी जन्मदिन है, ये मुझे इम्तियाज सर ने बताया है।
0: अरे बाप रे।
1: तो 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पे एआर रहमान की टीम का मैसेज आ जाता है, एआर रहमान स्टार्ट्स फॉलोइंग मी, और उनके टीम का मैसेज आ जाता है कि एआर रहमान सर आपको एक गाने के लिए आपका वॉइस ट्राई करना चाहते हैं। और जब हम गए तो पता चला कि उन्होंने मेरा कोई भोजपुरी गाना सुना था इंस्टाग्राम पे। एंड फिर आई एम श्योर उन्होंने पार्किंग लॉट के भी गाने
0: सारे सुने होंगे।
1: और यू नो एआर रहमान जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफी सोच समझ के करते होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमको समझ आया कि ये यू नो जितना पावरफुल हम सोशल मीडिया को समझ रहे थे आज से 10 साल पहले, और जब हम ये जर्नी शुरू किए थे कि हम लाइव ही गाएंगे, हम कभी भी मुंह नहीं चलाएंगे वीडियो में, जब भी गाएंगे लाइव गाएंगे। क्योंकि ऐसा बहुत सिंगर्स करते थे अच्छा रिकॉर्ड करके और वो अपने गाने पे एक्टिंग करके मुंह चला के डाल देते थे। बट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस प्लेटफॉर्म एज माई इंडियन आइडल ऑडिशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना मोंटी शर्मा वाला, वो हमको बहुत डरा दिया था। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक जावेद अख्तर बोल देते हैं कि रहमान सर आप जरा दीपाली को सुन लीजिए, वो एक अलग प्लेसमेंट होगा। पर अगर उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी बोल देता है कि आप दीपाली को सुन लीजिएगा, वो एक अलग प्लेसमेंट होता है। अब मेरे भाग्य में ये नहीं है कि हमको जावेद अख्तर सब जगह भेज पाए, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे?
0: ये एक जरिया बना।
1: हाँ, यही जरिया मेरे दिमाग में, यही जरिया हम बनाए। आपको पता नहीं है, मतलब आज मेरा सौभाग्य है कि इम्तियाज अली सर का नंबर है मेरे पास और हम उनको फोन कर सकते हैं और यार रहमान सर से हम बात कर सकते हैं। पर इम्तियाज अली सर के मैसेंजर में, इंस्टाग्राम के मैसेज में हमने अपने पार्किंग लॉट के गाने भेजे हुए हैं इस उम्मीद पे कि क्या पता इनको कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता ये गलती से देख लें। तो ये जो था मेरे लिए, हम चाहते थे कि जिस दिन भी हमको कोई म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, हमको किसी और के माध्यम से नहीं जाना पड़े, वो सीधा हमको बुलाए, क्योंकि फिर बात क्लियर है। किसी पैरवी से हम नहीं आए, किसी की सिफारिश नहीं लगी है मेरे लिए, मेरी योग्यता है इसलिए हम उनके सामने बैठे।
0: वाह।
1: और ये योग्यता जो है सिद्ध करने में अगर हमको जन्म भी बीत जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 ही साल लगा।
0: लेकिन ये 10 साल बहुत कठिन साल, बहुत फोकस के, जद्दोजहद के, कंफ्यूजन के साल।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत। क्योंकि अब हमको क्या लगा कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो इसके ऊपर कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे आपके दीपाली सहाय के हैंडल पर आता है तो उसके पास देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए, आप उसको फंसाएंगे कैसे कि वो आपके गाने तक पहुंच तो सके। अब अगर ये लड़की गाना ही शुरू कर दे तो फंस जाएगा कोई भी। लेकिन अगर एक ही वीडियो डालेगी तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि एक करे और नहीं। अब ये शुरू हो गया रेकरिंग, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जो यूनुस पिछले 10 साल से चल रहा था। और इस पूरे 10 साल में बस यही था कि जो भी हमको कोई भी सुने वो बस ये समझे कि ये लड़की अच्छा गाती है। और दिल के अंदर दम कोने में ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा गलती से भी भगवान तुम गाना पहुंचा देना यार रहमान के पास प्लीज।
0: वाह वाह वाह।
1: क्योंकि कुछ 3 साल पहले रहमान साहब का एक इंटरव्यू था इंस्टाग्राम पे और उनसे पूछा गया कि आप नया टैलेंट कहाँ ढूंढते हैं,
0: उन्होंने कहा था
1: इंस्टाग्राम।
0: यस बिल्कुल, बहुत चर्चित हुआ था।
1: तो ये 3 साल पहले की बात है, मेरे अंदर फिर से वही विश्वास कि अब तो पहुंचेगा ही। पर पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं, पर विश्वास था कि पहुंचेगा।
0: वो पल जब आप गा रही थी वो कितना सपनीला पल था।
1: ओहो कैसे बताए हम। हम उस स्टूडियो में बैठे थे जहाँ रोजा और लगान जैसी फिल्में बनी थी और वहाँ पर हमको बुलाया गया था
0: चेन्नई में, एआर रहमान स्टूडियोज।
1: एआर रहमान जी का जो स्टूडियो है पंचतन नाम है इसका, वो उनका घर है, होम स्टूडियो है उनका।
0: बिल्कुल।
1: और जब हम पहुंचे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 6 जनवरी की रात मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, वो प्लेबैक सिंगर है और बहुत बेहतरीन कलाकार है, वो हमसे पूछे थे कि अब जब तुमको सच में एआर रहमान सर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं और अगर तुमको सच में बुला लें तो तुमको क्या लगता है, तुमको क्या चाहिए? तो हम बोले एकदम दिल से बताएं क्या चाहिए। तो बोला हाँ। तो हम बोले यार सपना तो यही है कि इम्तियाज अली की फिल्म हो, इरशाद कामिल के बोल हो और एआर रहमान का एक गाना हो सोलो।
0: एग्जैक्टली

0: एग्जैक्टली ये बोला,
1: एग्जैक्टली ये मेरे शब्द थे।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: जेवा पे सरस्वती बिराजती हैं भाई, बिराजती।
0: क्या बात है, क्या बात है। और ये संभव हुआ।
1: ऐश्वर्य ने बोला भी कि यू नो एआर रहमान जिसको भी फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया में ढिडोरा पीटता है कि अब तुम सबको बता दो कि यू नो तो उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी उन लोगों की नजर में जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर एआर रहमान इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी इनको सुनना चाहिए। तो मेरे क्या शब्द थे कि अभी नहीं बताएंगे। आज 6 जनवरी है, आज से 6 महीने में मेरा एक गाना रिलीज होगा एआर रहमान सर के साथ, तब बताएंगे दुनिया को।
0: अरे गजब।
1: और 10 जून को मेरा गाना रिलीज हुआ था।
0: एग्जैक्ट 6 महीने।
1: एग्जैक्ट 6 महीने।
0: वाह वाह वाह वाह, बड़ा जादुई मामला है।
1: जादुई है सर, इसमें टैलेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भाग्य है, सिर्फ मेरा सौभाग्य है। टैलेंटेड, मेरे जितने टैलेंटेड हजारों लोग हैं, हजारों।
0: दीपाली, ये एक ऐसा गाना है, मैं वापस आऊंगा का गाना, कि आज इस पर लाखों करोड़ों रीलें बन गई, कितने सारे लोग इसको टॉकीज में सुनकर रोते हैं, फिर अपने साथ ले आते हैं, फिर घरों में सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां हम आपसे वो गाना लाइव सुने।
1: जी जरूर।

0: जब आप ये सारे गाने की बातें गा रही थी, ये गाने भी बहुत इंटेंस गाने हैं, ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूम धड़ाम गाने नहीं
1: है,
0: ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थी, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
1: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि यू नो फिल्म में ये क्यों है गाना और ये कहाँ आता है और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है, तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे। क्योंकि जब गाना सुने और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीजों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट है हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे, तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में, वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब हम गाना सुने थे तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
0: बहुत बड़ी।
1: पर मेरे अंदर खुद को ही लेके यू नो
0: संशय था,
1: हाँ, कि ये जो बात हो रही है, और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था। ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है, ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है, ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं, ये जीनियसेस हैं। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है, और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो।
0: वाह वाह।
1: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूँ, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूँ। ये जो बातें थी, ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा, ये बहुत अपना सा। ये सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की, इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए सबके पास,
0: बिल्कुल,
1: और इंस्टेंट अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
0: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोक गाने भी है, तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
1: बाप रे, ये एल्बम हमको लगता है

0: आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
1: कंप्लीट एल्बम है,
0: कंप्लीट एल्बम है. यस
1: तो मस्कारा भी सुना दीजिए.
0: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना.
1: अच्छा?
0: जिसने गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका.
1: बिल्कुल.
0: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस गिटारिस्ट.
1: उसको ये मौका दिया गया,
0: उसको ये मौका दिया गया. देखिए कितना कमाल है रहमान सर.
1: हमको तो आपकी आवाज में सुनना है.
0: अखियां लगाई रखना.

0: ਸਿਆਰਾ ਕੀਆ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਮ ਸਿਆਰਾ ਲਾਈ ਮਸਕਾਰਾ ਲੱਕੀਆ ਨਿਭਾਈ ਰੱਖਣਾ।
1: जब रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रही थी तब रहमान नहीं थे साथ।
2: नहीं थे जी।
1: और बाद में मुलाकात का एक पूरा ब्यौरा है
2: जी,
1: हम चाहते हैं कि हम वो भी दर्ज करें, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे
2: जी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक जो छवि है उनकी, वो बहुत कम बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी बहुत थोड़े से शाये हैं, लोगों को हम जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। शायद इसी वजह से हमको दस साल लग गया एक गाना मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं, ना बात करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था। तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से।
1: क्या बात,
2: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
1: बिल्कुल,
2: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी, बोला ना, सपने में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो। और हम लोग चलना शुरू किए और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल दीपाली।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और उसके बाद हम लोग अंदर गए और वो जहां भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है, वो उसको हमेशा बजाते हैं और उनका काफी आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देव लोक में लेके जाता है।
1: उनके लिए एक समाधि जैसा है,
2: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद।
1: वाह वाह।
2: और उसके अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं, नींद से नहीं उठे हैं अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम एआर रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम।
1: ओ हो हो हो हो।
2: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए और हमने गाए पुराने गाने।
1: क्या बात है, क्या गाया?
2: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है,

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ से उठाया इस गाने को।
1: हाँ, ये अच्छा एक लगा। ये मेरा स्टाइल है वैसे, किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों

0: अंतरा से गाते हैं। ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मे भी इसलिए शायद, वेरी गुड एक्चुअली गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
0: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है मछली के, यू नो कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है। और ये जो अंतरे हैं ना इन गानों के,
1: असली रूह इनमें है
0: तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
1: क्या बात है।
0: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था। और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास, उस समय 500 व्यूज से 5000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही सारे एहसास है, मुखड़ा तो रिपीट होता है।
1: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस है, क्या बात है।
0: वो लोग अटकते हैं इसमें,
1: क्या बात है। एक गाना
0: जी
1: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है
0: जी,
1: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
0: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है।
1: वाह,
0: कुछ भी हो सकता है। अपने आप को यहाँ तक बोल दो कि जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये।
1: क्या बात है,
0: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं है।
1: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की, हमने ऐश्वर्या की बात नहीं की। तो चलते चलते उनकी बातें की जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए।
0: ऐश्वर्या से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी। और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से, 2006 में ऐश्वर्या ने एक रियलिटी शो जीता था, वो बिहार से पहले थे। और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्या भी खड़े थे।
1: अच्छा?
0: हम भी ऑडिशन देने गए थे। ऐश्वर्या को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्या का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली है। बहुत भारी भरकम इंसान है वो। तो वो आप उनको बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है। तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था। तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है। पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
1: मतलब बरसों बाद
0: 2005 में हम उनको देखे थे, 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे। और 2006 में जब ऐश्वर्या को हार्ड मांस में देखने के बाद जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्या से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्या टुडे, द कंटेस्टेंट ऐश्वर्या जो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का। वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं। जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे, मेरे दिमाग में गलत सोच है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्या की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्या से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी कि यू नो यू हैव बीन अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्या का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्या भी रफी साहब भक्त हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: रफी भक्त हैं।
1: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त, एक किशोर भक्त।
0: हाँ, ये
1: किशोर प्लस गुलजार भक्त,
0: करेक्ट। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, ये घर में मुद्दा है हमारे लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे,
0: बहुत,
1: है ना, अपने घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
0: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है। हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्या एक बहुत ही गुणी कलाकार है, बहुत समझदार कलाकार हैं, और मर्दों में जो मिसिंग है, यू नो, जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्या वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन

0: जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं और आप ज्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहाँ एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
1: वाह वाह वाह,
0: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो मुलायम है।
1: वाह,
0: ये बहुत खूबसूरत, और शायद यही वजह है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है, क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था। मेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे घर वाले पापा मम्मी पापा माँ पूरी औरत है, पिताजी पूरे मर्द हैं। पर ऐश्वर्य से मिल के समझ आया कि पूर्ण तो वही है जिसके अंदर दोनों है,
1: बिल्कुल,
0: और पूर्णता से है,
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट आज के डेट में वो है ऐश्वर्य निगम, वो जो सिर्फ मेरे साथी ही नहीं है, हमको सिखाए भी हैं। माइक पे गाना एक कला है और उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत पहले वो प्लेबैक सिंगर बन गए थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी पत्नी बने। तो शायद यू नो रहमान सर तक पहुंचने का ये सारा जो रास्ता था, गुरुजी से ऐश्वर्य जी से भी मिलना इसी में लिखा था।
1: उनके लिए कुछ गाने को बोलूं तो
0: हाँ।

0: क्या बात है, मुझे पार्किंग लॉट सीरीज याद आ गया।
1: यस, ये पार्किंग लॉट सीरीज में था,
0: ये बहुत चला था क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सुंदर गाना आर डी बर्मन
1: जी।
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, जो इसकी धुन है, जो बनावट है, अनमोल है। ये गाना सुनते हैं।

0: जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पर मेरी मुलाकात आज तक किसी आपके जैसे इंसान से नहीं हुई। हमको बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है सर, पर ऐसा हम कभी नहीं महसूस किए। इम्तियाज सर और रहमान सर से मिलके हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उनकी कला सीखने की तो मेरी औकात नहीं है, पर उनके सानिध्य में एक चीज हम जरूर सीखे कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो उस इंसान के साथ पूर्णतः होते हैं, चाहे वो 100 की भीड़ में भी क्यों न खड़े हों। वो अगर 15 सेकंड के लिए भी किसी की तरफ पलटते हैं तो वो 15 सेकंड उस इंसान के और उनके बीच कोई नहीं होता है। आप वो इंसान हैं, आप जो मेरे साथ थे, आप मेरे साथ पूर्णतः रहे, और वो आपकी खूबसूरती है कि इस तरीके से हम बात कर पाए। इस तरह से मेरे अंदर से चीजें सिर्फ मेरे पति ने निकलवाया है, मेरी बहन ने निकलवाया है, मेरे माँ बाप ने निकलवाया है, जिस तरह से आपने मेरे अंदर से वो चीजें निकलवाई हैं, आप कमाल हैं सर।
1: बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत शुक्रिया,
0: अमेजिंग,
1: थैंक यू।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 11 बजने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे नुसरत फतेह अली खान की गायक कुछ चुनिंदा गजलें।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: फ्लैट है?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदें। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अभी ही संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। चलिए ले चलते हैं आपको फिल्मी गीतों के सफर पर कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। लीजिए सुनते हैं ये गीत सांवरिया फिल्म से शान और साथियों की आवाज में।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: सुनते हैं ये गीत फिल्म 1920 इविल रिटर्न्स से महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में।

एक था टाइगर फिल्म का ये गीत आपके लिए लाए थे साजिद वाजिद की आवाज में। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में

0: ना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

तन्हा दिल एल्बम से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज में, राम संपत का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत दाग द फायर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे चंदा की डोली एल्बम का नाम। नुसरत बद्र ने इसे लिखा, संगीत सोनू निगम का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। हमने लिखा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान सोना।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मेरी चुनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत था। और इससे पहले जो आपने गीत सुना दीवाना एल्बम से, सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर ने उसे लिखा और साजिद वाजिद का संगीत था।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा उपाध्याय। आज इस सफर में, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो वो इबारत हमने पोस्ट कर दी थी और देखते हैं कि आपने कौन कौन से शब्द चुने हैं, कौन कौन से गीतों की लिस्ट बनाकर भेजी है वहां पर, और हमारी लिस्ट से आज वो कितनी मिलती जुलती है। अगर वो फहरिस्त हमारी लिस्ट से ना भी मिले तो भी आप अपने पसंद के गीत उन शब्दों से चुनकर लेकिन वहां लिख सकते हैं। हो सकता है हम उन्हें आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, लेकिन उससे पहले ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस इबारत को अभी तक नहीं पढ़ा है। इबारत कुछ इस तरह से है, वो दोनों पहली बार एक सफर में मिले थे। मुलाकात छोटी थी लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका चेहरा बार बार याद आता रहा। उसे खुद समझ नहीं आया कि जाने कैसे और कब एक अजनबी से दिल का इकरार हो गया। फिर मुलाकातें होने लगी, दोनों अक्सर हंसकर कहते, जब हम दूर होंगे ना तो ये गीत याद रखना। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, वो उसके प्यार के रंग में कुछ यूं रंग गया कि हर मौसम में उसे उसी की छवि दिखाई देने लगी। कभी उसे लगता वो उसकी जिंदगी का वो मीत है जिसका इंतजार शायद बरसों से था, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा, बहुत कुछ कहना था लेकिन शब्द कम पड़ गए। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, कुछ खूबसूरत पल देकर चले जाते हैं और हम बस तड़प कर उनका नाम ही ले पाते हैं। लेकिन उस प्यार की खूबसूरती यही थी कि उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। फिर खिड़की से आती

हवा को महसूस करते हुए उसने खुद से कहा, आने वाला पल जाने वाला है, तो जो पल मिला है उसे खोने का अफसोस क्यों। तो ये थी इबारत। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, और मुझे इंतजार है आपके संदेशों का।

इस गीत को लिखा था नक्श लालपुरी ने। और अब संदेशों की बारी आती है। आपने बहुत से संदेश हम तक पहुंचा दिए हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि कभी कभी जिंदगी के सफर में कोई अजनबी यूं मिलता है कि छोटी सी मुलाकात भी दिल पर उम्र भर की छाप छोड़ जाती है। उनसे कहना बहुत कुछ होता है लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं, और ऐसा ही एहसास आज की इबारत में उनको पढ़ने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ एहसास के साथ सजी है आज की इबारत। एक और श्रोता लिखते हैं कि छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, ये गीत उन्हें लगता है कि इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। देखते हैं लिस्ट में आता है ये गीत या नहीं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज महफिल में अजनबी की मुलाकात और उसके बाद की संगीत में जुगलबंदी सुनने का बढ़िया आनंद मिलेगा, और इसे आनंद कहना भी अतिशयोक्ति होगी। फिलहाल वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जिस खूबसूरत अनुभूति से लिखा गया है, प्रेम की यात्रा और स्मृति सौंदर्य का ये सुंदर रूपक है जिसमें राग भी शामिल होंगे, और प्रेम आत्मा का एक सुंदर ठहराव है जो जिंदगी के सफर में राह में मिले किसी अजनबी को आपकी जिंदगी का हमसफर बना देता है। वो चेहरा बार बार याद आने लगता है तो समझिए कि प्रेम का अंकुर फूट चुका है। इकरार होते ही मुलाकातों का सिलसिला प्रेम को परवान चढ़ाते हुए मंजिल की ओर हम सफर बनकर हमदम हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें तारीखों में नहीं मिलती, बस दिल की किसी खामोश तह में ठहर जाती है। वो भी एक सफर था, कुछ पल साथ चले फिर रास्ते अपने अपने हो गए। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि मुलाकात मुलाकातें नहीं बन पाती और बस एक मुलाकात बन जाती है, लेकिन वो जो एक मुलाकात होती है वो बड़ी सारी मुलाकातों पर भारी पड़ जाती है, जिंदगी भर ता उम्र याद रहती है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो हमसफर था या मेरी कोई खूबसूरत दुआ, जो मिला तो लगा जिंदगी मिल गई और बिछड़ा तो जाना कुछ लोग साथ नहीं सिर्फ एहसास बन जाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। और चलिए, जब मुलाकात की बात हुई और इस तरह से सुंदर संदेश आए, क्यों ना आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे संदेश लिखे जाएं जहां एक ही मुलाकात काफी है जिंदगी भर याद रखने के लिए। वो मुलाकात जरूरी नहीं कि प्रेमी के संग हो या फिर कुछ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन वो मुलाकात किसी के साथ भी हो सकती है। एक ऐसी मुलाकात जिसने आपकी जिंदगी बदल दी और फिर वो मुलाकात या उनसे मिलना दोबारा नहीं हुआ, इस तरह का कुछ अनुभव आप लिख भेजें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे पढ़ने में, और हमारे साथी श्रोताओं को भी सुनने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल और एसडी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविता।

0: आएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल, वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे प्रोग्राम सुरीला सफर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के लंबे और अनजाने सफर में कई राहगीर मिलते हैं, पर कुछ अजनबी दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। और कभी किसी शांत मोड़ या सफर में जल्दबाजी में भी हुआ अगर छोटा सा संवाद होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को, रूह को सुकून पहुंचाता है। फिर वो इंसान दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन वो जो प्यार की गर्माहट है वो कहीं ना कहीं रह जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी मुलाकात उन्हें याद आती है, उसका चेहरा आज तक याद आता है, बार बार याद आता है। और इस इबारत से मुलाकात शब्द पर ये जो पहला गीत हमने सुनवाया वो ही उन्होंने गेस किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि दो अजनबियों का आपस में टकराना, ये छोटी सी मुलाकात, यादों में बस जाना, धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई और लगा यही पल सबसे अनमोल है। इस रंग बिरंगी जिंदगी में मिलन के कुछ दिन जो आते हैं, लेकिन फिर बिछड़ना भी होता है, लेकिन वो सुनहरे पल हमेशा यादों में बस जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत जो है प्यार के उस सबसे पावन और परिपक्व रूप को दर्शाती है, जहां पा लेने से ज्यादा महत्व है महसूस कर लेने का। और इस कहानी में मिलना, बिछड़ना और फिर तड़प तो है ही, लेकिन आखिर में कोई शिकायत नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार जवाब या हक नहीं मांगता है, वो सिर्फ मौजूदगी का एहसास मांगता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसे, बहुत ही सुंदर मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वक्त अपनी रफ्तार से चला जा रहा है, वो उसके प्यार के रंग में कुछ यूं रंग गया कि हर मौसम में उसे उसी की छवि दिखाई देने लगी। ये इबारत से उन्होंने पंक्ति उठाई है और कहा है कि इस इबारत में ये जो रंग शब्द है, इससे हमने ये रंगीला रे गीत जो है अभी आपको सुनवाया। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा और सही लिखा है। और आपके जो अनुभव उस पहली मुलाकात, या यूं कहिए कि एक मुलाकात के, वो किसी से भी हो सकते हैं जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया हो, आपको बदल दिया हो, आपके सोचने के नजरिए को बदल दिया हो। इस तरह के संदेश आप मुझ तक पहुंचाएं। हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ, दूसरे यानी कि अगले गीत की तरफ इस प्रोग्राम के।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत शक्ति फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। और मुलाकात जिसने बदल दिया हो या जो याद रह जाए, उसमें एक संदेश आया है हमारे श्रोता का। लिखते हैं कि कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, वो सिंगापुर गए थे और वहां 3 साल की मासूम जापानी बच्ची साशा से मुलाकात हो गई थी, जिसने उस सफर में अपनी बाल लीलाओं से दिल लुभा दिया था। और अब तो साशा काफी बड़ी हो गई होगी, 20-25 साल की युवती हो गई होगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ उसकी सुंदर तस्वीर और यादें ही रह गई है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब वे स्कूल में थे तो एक लड़की जिसका न्यू एडमिशन हुआ था, वो एक सप्ताह तक स्कूल आई लेकिन फिर उसको स्कूल में नहीं देखा। शायद वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हों और उस समय तो नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। एक सप्ताह में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, आज तक उन्हें वो बात याद है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि कुछ लोग जरा देर से खुलते हैं तो पहली मुलाकात से मायूस नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन वो अगली मुलाकात आनी भी तो चाहिए। अगले हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि पहले सफर में किसी अजनबी से मुलाकात का एहसास दिल में एक अनूठी हलचल, अनजाना सा अपनापन और एक खूबसूरत याद छोड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता का लिखना है

कि परिपक्व प्रेम मुलाकातों का मोहताज नहीं होता, अदृश्य रहकर भी समर्पित प्रेम किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर भाव। हमारी एक और श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सभी को यथा योग्य सप्रेम अभिवादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज जागो सुबह हो गई से जगे कुछ अपने ही पग में पगे संगीतमय सुरों की सरिता में घुलकर भूले बिसरे गीतों की चांदी में नहाकर और हम है राही प्यार की आंधी में त्रिवेणी तट से सुबह कालीन चित्र लोग के साथ फिर आज के फनकार से मिलते हुए और गीतों के पिटारे को खोलते हुए साहित्य परिचर्चा यादों की महफिल से उभरते हुए अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम तक वो पहुंच चुकी हैं, वो शामिल है हमारे साथ। जी हाँ, हमारे सभी सुबह से जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उनका एक सुंदर, कहते हैं एक सुंदर माला बना दी है आपने इन शब्दों को जोड़कर, उन शीर्षक को जोड़कर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। फिलहाल हम ये गीत आप तक पहुंचाते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात की जब बात चली है तो एक बहुत ही खास मुलाकात उन्हें याद आती है और वो अपनी शादी का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जो शादी हुई है वो भी विविध भारती के जरिए ही हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपको सुनवाते हैं कि ये भी विविध भारती के फैन रहे हैं और इनकी जो अर्धांगिनी है वो भी विविध भारती की दीवानी थी और बस ऐसे ही धीरे धीरे विविध भारती से जुड़ाव होता रहा और नजदीकियां हुई और फिर शादी हो गई। आज हम साथ साथ हैं और साथ साथ में ही ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत अच्छा लगा ये मैसेज पढ़कर हमें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें बस याद बनकर रह जाती है। आज लगता है उस धुंधली यादों से कोई चादर हटा दे और हम खो जाएं उन पुरानी मुलाकातों में। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि अहमदाबाद जाते हुए परिवार से ट्रेन में हुई जो सामने की बर्थ पर जा रहे थे वहां उनसे मुलाकात हुई और वे सज्जन तो भद्र पुरुष थे ही, उनकी श्रीमती जी बड़ी हंसमुख और मिलनसार महिला थी और वो अकेले जा रहे थे। मैगजीन में डूबने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों से इतने घुल मिल गए कि बात हुई बातों में घंटों का सफर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा होता है अक्सर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात तो सभी करते हैं लेकिन मुलाकातों में जीते भी हैं, लेकिन ये मुलाकातें कैसी हैं और उसके मूल्यांकन क्या हैं ये कितने सोच पाते हैं। किंतु ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ मुलाकातें याद बनकर हृदय में बस जाए तो उसका क्या ही कहना। सदियों से विभिन्न मुलाकातों के बीच ऐसी मुलाकात की तो प्रतीक्षा रहती है हमेशा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ट्रेन में सफर करते हुए एक लड़की और उनकी सहेलियों से मुलाकात हुई और अंताक्षरी वगैरह खेली और अभी उन्हें वो याद आती है, वो सुनहरी मुलाकात आज तक भुलाए नहीं भूलती है। हमारे एक और श्रोता है, उनका कहना कुछ अलग तरीके से है। वो कहते हैं कि सफर में न जाने कितने लोग साथ आते हैं कितने साथ छोड़ देते हैं, कभी हिसाब नहीं रखा क्योंकि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, वो इसमें बिलीव करते हैं। कोई बात नहीं, सफर तो हमें करना ही है, कभी कोई साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो हमें अकेले ही चलना है, लेकिन ये सफर जो है वो जरूर तय करना है। फिलहाल सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: अभिमान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज थी।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं

0: जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम याद, प्रोग्राम सुरीला सफर। यादों की बात चली है तो यादों की महफिल बोलने वाली थी, लेकिन सुरीला सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरे यानी अनुराधा के संग। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि ट्यूशन पढ़ते समय शिक्षक द्वारा मेरी गलतियों पर मुझे डांटते देखकर उसकी नजरें उठाना और फिर मुस्कुराना और फिर मुझसे नजरें मिलते ही नजरें झुकाकर बस मंद मंद मुस्काना, जाने कैसी बिजली सी कौंद गई थी दिल में और दिल रोशन हो गया था। संवाद का लेन देन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सुनहरी यादें बनकर अब तक दिल में बसी हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातों का मौसम आ गया है तो गाने तो बनते हैं। बिल्कुल, गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आप कौन से गीत का इंतजार कर रहे हैं ये जरूर लिख भेजिए। देखते हैं अब फहरिस्त जो बाकी की बची है उसमें वो गीत आता है या नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अजनबी था मगर कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब अचानक सामने आ गया। मुलाकात तो बस चंद लम्हों की थी पर उसकी खामोशी देर तक मेरे साथ चलती रही। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ मुलाकातें एकदम खामोश रहती हैं, संवाद भी बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, लेकिन वो एक चेहरा, वो एहसास कभी नहीं भूल पाता। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

किशोर कुमार की आवाज में गीत धर्मात्मा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मेरी सोच और शख्सियत को ही बदल दिया है। कुछ साल पहले अपने दोस्तों के साथ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एलिफेंटा केव्स जाने के लिए बोट की कतार में खड़े थे और वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और ठीक उनके पीछे खड़े हैं और इन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप लाइन में खड़े होने के बजाय पहले बोट में बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए मना किया और ये कहा कि मैं यहां एक आम नागरिक के तौर पर हूं और मैं लाइन में ही खड़े रहूंगा। ये कहीं का जो बातें हैं कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर के रख दिया और तब से उनकी सादगी के और भी ज्यादा फैन हो गए। जी हाँ, ये तो है कि सादगी तो हमें जरूर सीखनी चाहिए जहां से भी हमें सीखने को मिले और ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती इस वक्त न जाने कितने सारे करोड़ों की तादाद में लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पेश हो रहा है क्योंकि इतना ज्यादा वो रिलेट कर पा रहे हैं गीतों से और बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं, एक श्रोता लिखती हैं कि वो और उनके पति भी उन्हें रेडियो से ही मिले। सूरत FM पर उन्होंने ये गीत पसंद किया था और सामने जो बैंक में बैठे उनके पति हैं उन्होंने सुना था और बात भी पैसों की हुई थी क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं और इस तरह से कहीं ना कहीं उनका मिलना हुआ, बातचीत हुई और आगे उनकी शादी हुई। बहुत अच्छा लगा कि रेडियो के मार्फत आप मिले। हम चलते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

किशोर कुमार की आवाज में गीत गोलमाल फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो सुरीला सफर है इसमें गीत तो सुनने को मिलते ही अच्छे अच्छे, लेकिन साथ ही साथ हम संदेश भेजें या ना भेजें, लेकिन जो बाकी श्रोता लोग हैं उनके संदेश पढ़कर कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस होता है और ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने संदेश अगर यहां पर लिखें तो कहीं ना कहीं उनसे एक रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे को श्रोता लिखते हैं कि मोहब्बत का अर्थ हमेशा साथ पाना नहीं, कभी कभी मिले हुए खूबसूरत पलों को मुस्कुराकर संजो लेना भी है, और ऐसा ही कुछ इबारत में एक छोटी सी मुलाकात के द्वारा बताया गया है। बिछड़ने की कसक तो है, लेकिन जाते जाते उन खूबसूरत याद जो है वो दिल में हमेशा जीवित रहनी चाहिए, ये भी बताया हुआ है। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि जिंदगी के सफर में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मंजिल नहीं बनते मगर सफर को यादगार बना जाते हैं। वक्त उन्हें दूर कर देता है लेकिन उनकी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा महकती रहती है, और बस जब मन करता है हम उन्हें याद कर लेते हैं। ऐसे पलों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर के दौरान किसी अजनबी से सिर्फ एक मुलाकात होने के बाद कभी दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जो मुलाकात होती है वो बहुत से खूबसूरत पलों से जिंदगी को भर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने।

किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का ये छोटा सा गीत का छोटा सा हिस्सा हमने आपको सुनवाया। फिलहाल वक्त की कमी की वजह से हमें अलविदा कहना पड़ेगा। आपने आज का ये सफर, सुरीला सफर, तय किया अनुराधा के संग।

त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। नमस्कार। दीवाना, ये शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले प्रेम और जुनून की तस्वीर उभरती है। किसी के प्रति ऐसी गहरी चाहत जिसमें इंसान अपने आसपास की दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाए, उसे दीवानगी कहा जाता है। प्यार में डूबा व्यक्ति अपनी प्रिय की एक झलक के लिए बेचैन रहता है और उसकी मुस्कान में अपनी खुशियां तलाशता है। दीवानगी केवल प्रेम तक सीमित नहीं होती, किसी सपने, कला, संगीत या अपने लक्ष्य के लिए भी इंसान दीवाना हो सकता है। दरअसल दीवानापन उस जुनून का नाम है जिसमें दिल किसी चीज को पाने या महसूस करने के लिए पूरी शिद्दत से धड़कता है।

देती है तो कभी उसकी दूरी बेचैन कर देती है। हिंदी फिल्मों और पुरानी गीतों ने इस दीवानगी को बेहद खूबसूरती से शब्द और संगीत दिए हैं। इसलिए दीवाना शब्द सिर्फ पागलपन का पर्याय नहीं बल्कि ऐसी भावनात्मक अवस्था भी है जहां दिल अपनी बात दिमाग से ज्यादा मानता है और प्रेम की अनुभूति जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है।

एल्बम। दीवानगी में एक अजीब सी खूबसूरती होती है। जब इंसान किसी के प्यार में दीवाना होता है तो उसे हर तरफ उसी का चेहरा दिखाई देता है। मौसम सुहाना हो या उदास, हर एहसास उसी व्यक्ति से जुड़ जाता है। कभी उसकी आवाज दिल को सुकून

कई बार दीवानगी किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए होती है। कोई गायक संगीत का दीवाना होता है, कोई कलाकार अपनी कला का, तो कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के जुनून में दिन रात मेहनत करता है। ऐसी दीवानगी इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े काम उन लोगों ने किए जिन्हें अपने सपनों पर असाधारण विश्वास था। प्रेम की दीवानगी हो या सफलता की, इसकी असली खूबसूरती तब है जब वो इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा दे। शायद इसी एहसास को पुराने गीतों ने बार बार अपने अंदाज में आवाज दी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी

0: टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
0: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए ऋषिकनाथ, आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। इस शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की, जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
5: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ एक जबरदस्त

0: कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है, तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परम्परा का स्वामी है।
2: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गयी। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की यह पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

जब जब फूल खिले, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। नंदा ने साथ दिया, आनंद बख्शी ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

0: आज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दोनों।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत तेरे घर के सामने फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने से लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज़।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म का नाम, मजनू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैम्प लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मधुमती फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मुकेश की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हिमालय की गोद में फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मन चाहे गीत। आपके फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा उपाध्याय सुनवाने वाली हूं आपके पसंदीदा गीत। और लीजिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ और उसके बाद हम नाम लेंगे उन श्रोताओं का

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। इस गीत को सुनना चाहा था समलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव ने। नेपाली पारा नाजिरगंज, हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक स्वीटी, उषा ज्योति, किरण दिरशा, रितेश लिंबू और उनका परिवार। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाद्दीन और यूसुफुद्दीन ने। अब्दुल बाबा अंजाना ने भी इसे सुनना चाहा था। वाड़ी वडोदरा गुजरात से गिरीश बाम, वैशाली बाम, अजिंक्य और अक्षय ने इसे सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनना चाहा था बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से डॉ डब्लू अंसारी, डॉ सोनम अदीबा, दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में अनुरोध फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने से लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। और इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी कोल सिटी बरका गाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुग ने, परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीला और तुषारिणी, साथ ही साथ खुमेंद्र मसीहा ने इसे सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। फ्रेंड्स कॉलोनी बैंगलोर से आरिफ हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने, साथ ही पटवा हिम्मतलाल हरकचंद ने, वर्धमान नगर जैन सोसाइटी भचाऊ कच्छ भुज से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार। गांव चलाना काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल खलील और महबूब दल ने। पुराना तालाब डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और बिटिया सोनम ने। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म से इंदिवर ने से लिखा उषा खन्ना का संगीत और इस गीत को सुनना चाहा था लावरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया प्रमिला बामनिया नंदिनी मुस्कान नीलम और उनका समस्त परिवार कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव हिमानी हर्षिता और अभिषेक वरोड़ा चंद्रपुर से लवकुश खाडिलकर उमा देवी खाडिलकर रोहित और प्रणीत ने डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया सुनीता बोकोलिया संजय अनिल मीनू ने और अकोला महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा था गजानन कुम्हार पद्मावती कुम्हार विशाल ज्योति मधुर और उनके परिवार ने।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन चाहे गीत।

चलते चलते ये गीत पाकीज़ा फिल्म से हमने आपको सुनवाया और इस गीत को सुनना चाहा था गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल निशा ने, पटेल नगर मलोट से डॉ रमेश कुमार झाझूरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू ने, रामना हल्ली बेंगलुरू से मोहम्मद आरिफ, अरफा फातिमा, एमएच शरीफ और आरिफ हुसैन ने, तालुका उमरखेंड ढांकी से राम गाड़ेकर, सुनीता गाड़ेकर और अभिजीत, साथ ही कोमल अभिषेक, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, साथ ही उनका समस्त डागला परिवार इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो आइए सुनते हैं नाटक साबुन की टिकिया।

0: रोटी, मेरी तो समझ में नहीं आता हम इस पार्क में क्यों चले आए।
1: क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा फिलिप?
0: अच्छा लगने को यहाँ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ?
1: फिलिप, यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
0: अच्छा, मिस्टर नॉर्मन गॉड्स बाय, आप जरा उस बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे जिसे आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने देखा है और ये नाचीज अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाया।
1: देखो फिलिप, इस शहर में सभी लोग सुखी और सफल नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जीवन के संघर्ष में अभी तक असफल रहे हों और निराशा का मुंह देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी निराशा और असफलता को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे लोग शाम के धुंधलके में यहाँ आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके।
0: लेकिन गोटी, इसमें पार्क की खूबी कहाँ से आ गई?
1: देखो देखो देखो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जिंदगी में थके हारे ये लोग अपने दुखी मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आनंद देने के लिए यहाँ आ जाते। इस शांत वातावरण में, चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर बैठकर उन्हें बहुत सुकून मिलता। वो अपना दर्द, अपनी परेशानी सब भूल जाते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो चेहरे पर उदासी की जगह ताजगी और निराशा की जगह आशा झलकने लगती है। अब बताओ फिलिप, क्या ये कम बड़ी बात?
0: वाकई वाकई बहुत बड़ी बात है। और गौश भाई साहब, अब मेरी समझ में आया कि आप आज यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं।
1: मैं?
0: हाँ, तुम। आज के दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति भी किसी निराश और हारे हुए आदमी जैसी ही है।
1: कैसे?
0: तुम्हारी प्रेमिका ने अचानक तुमसे मुंह फेर लिया और उधर बिजनेस में भी थोड़ा घाटा हो गया। ऐसी निराशा में, जैसा कि तुम्हारा कहना है, यहाँ आकर ही तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता था, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं दोस्त, ये बात नहीं है। रोजली ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत। दो दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चली आएगी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता। सच मानो फिलिप, यहाँ आने की वजह मेरी निराशा कतई नहीं है। हाँ,
0: तो फिर कौन सी वजह तुम्हें आज यहाँ खींच लाई और तुम मुझे खींच लाए?
1: अब फिलिप, शायद मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ।
0: अच्छा?
1: यहाँ आते जाते लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब तुम ही देखो, वो उस बेंच पर अभी अभी जो साहब आकर बैठे हैं ना, है? उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मकान का किराया नहीं दिया और मकान मालकिन के डर से यहाँ चिपे बैठे हैं।
0: अच्छा, वो देखो, वो औरत जो उधर घास पर बैठी है, उसका चेहरा क्या बता रहा है?
1: साहब बता रहा है कि उसकी मैडम ने उससे महीने भर काम कराया, लेकिन तनख्वाह देते समय इधर उधर के नुकसान थोप कर सिर्फ 15 दिन के पैसे पकड़ा दिए। लेकिन तुम देखना, थोड़ी देर बाद ही इनके चेहरों के भाव बदल जाएंगे। किराएदार कल का पक्का वादा करके आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में जाएगा और वो औरत अपना दब्बूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ, देखना।
0: तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था।
2: पता नहीं यार, तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए।
1: नहीं दोस्त, नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है, ये सब तो खाली वक्त के शगल है।
0: अरे गोटी, हाँ। भाई तुम्हारा शगल पूरा हो गया हो तो अब चले यहाँ से।
1: हाँ चलो।
0: देखो भाई, मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना।
1: नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल या किसी और दिन।
0: क्यों भाई, आज क्यों नहीं?
1: भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और

0: और नुकसान नहीं करूंगा।
1: मान गया यार, तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी, चले।
0: हाँ चलो।
1: अरे हाँ यार, याद आया यार, मुझे तो 7 बजे डॉक्टर हैगर्ड के पास जाना है, वहां थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या?
0: नहीं नहीं नहीं फिलिप, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं।
1: ठीक है, मैं जल्दी ही वापिस आता हूँ। हाँ। लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना।

0: बेटा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
1: जी जरूर जरूर बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए, आइए आइए।
0: आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा।
1: पर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते, फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा ऐसा मत कहिए। अच्छा आप यहाँ रोज आते हैं?
0: और कहाँ जा सकता हूँ, किसी तरह वक्त तो काट नहीं है।
1: लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेले रहते हैं क्या?
0: हाँ ऐसा ही समझो, मेरी पत्नी पिछले साल निमोनिया से चल बसी।
1: ओह,
0: घर में दो शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं सब बाहर चले जाते हैं।
1: अब कहाँ कहाँ चले जाते हैं?
0: अपनी अपनी नौकरी पर।
1: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता, और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है।
0: लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ, रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं, सच मानो ये उपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो?
1: अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बनाकर रख दिया, जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? है?
0: ये जरा सी बात है, है? इस उम्र में इतना अकेलापन?
1: श्रीमान इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए।
0: मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो।
1: श्रीमान आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते, बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, फिर देखिए ना आपको वक्त का पता चलेगा और ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्यों क्या सोचने लगे श्रीमान?
0: नौजवान तुम्हारी बात में वजन है, इस पर अमल करके देखता हूँ कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा अब चलूंगा।
1: अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आप आए हैं।
0: आज कुछ जल्दी है, ये थैला देख रहे हो ना?
1: हाँ
0: यहाँ आते हुए बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी।
1: अच्छा अच्छा
0: इन्हें घर पहुँचाना है। अच्छा भाई फिर मिलेंगे।
1: हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर फिर मिलेंगे। ये फिलिप अभी तक नहीं आया, कह रहा था डॉक्टर की क्लिनिक से जल्दी ही लौटाऊंगा, इतनी देर हो गई लेकिन इसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। एक जगह बैठे बैठे पांव सोने लगे, जरा पार्क का एक चक्कर लगाकर आता हूं।

0: है ये मेरी बेंच पर अब ये कौन जनाब आकर विराजमान हो गए? लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता। इस बार उन बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अरे ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है।
1: साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे, आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती। अब भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो
0: माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप किससे बातें कर रहे हैं?
1: और किससे करूंगा साहब, नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूँ।
0: साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं।
1: जिस भंवर जाल में मैं फंसा हूँ, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते।
0: अच्छा,
1: समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा।
0: किसी ने आपको धोखा दिया है क्या?
1: अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ।
0: आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे?
1: अरे क्या बताऊँ, दरअसल बात ये हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था।
0: अच्छा।
1: और चूंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था।
0: हाँ, वो कौन सा होटल?
1: अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर।
0: पेंटागोनियन होटल? लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा।
1: हाँ, वही तो। स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर मैं यूं ही खड़ा उस इमारत को देखता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, कहां ठहरूं।
0: वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते।
1: अब ये सब तो आप जानते हैं ना, मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। खैर, मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया।
0: आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए।
1: हो सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी टिप भी दी। वो इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था।
0: अच्छा अच्छा।
1: खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया, और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा।
0: साबुन खरीदने?
1: जी
0: साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं।
1: वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं मिस्टर, वो सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ?
0: हाँ, गोट्स बाय, नॉर्मन गोट्स बाय। वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं।
1: ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूँ। होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है।
0: अजीब आदत है।
1: हाँ, है तो अजीब ही। वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूँ, इस बार मैं सामान में साबुन रखना भूल गया। खैर, मैंने होटल में एक प्याला चाय पी और साबुन खरीदने निकल पड़ा। साबुन खरीदा और घूमता फिरता दूर तक निकल गया। सोचा बाजार की रौनक ही देख लूं।
0: लगता है आपको हमारा शहर बहुत पसंद आ गया। वैसे लंदन बुरा शहर नहीं है, आपका क्या ख्याल?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, लंदन बड़ा ही अच्छा शहर है, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से यहाँ रहने का सारा मजा किरकिरा कर दिया।
0: वो कैसे?
1: अब वही बता रहा हूँ। अब देखिए, काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने सोचा कि अब लौटना चाहिए। बस मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उस होटल का नाम ही भूल गया हूँ।
0: अरे,
1: अब होटल का नाम ही नहीं, मैं उस सड़क उस एरिया का नाम भी नहीं जानता था जहाँ वो होटल था।
0: तो फिर आपने क्या किया?

0: करता, कभी कभी एक सड़क पर चला जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन ना तो वो होटल मिला और ना ही उसका नाम याद आया।
1: ओह,
0: तब से मैं यूं ही भटक रहा हूं। मिस्टर गोटी, जो आदमी लंदन पहली बार आया हो, जिसका यहाँ ना कोई दोस्त हो ना रिश्तेदार, उसकी परेशानी का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं।
1: हाँ, वाकई परेशानी की बात तो है साइमन साहब।
0: हाँ,
1: मैं क्या आपकी समस्या का कोई हल नहीं है?
0: समस्या का एक ही हल है, वो ये कि मैं अपने घर पर तार कर दूं और उनसे होटल का नाम पता भेजने को कहूं। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है।
1: वो कैसी मुश्किल?
0: अब देखिए, घर वालों को मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है, उन्हें 2-3 दिन बाद चिट्ठी मिलेगी, तब तक मैं कहां रहूंगा, कहां जाऊंगा? सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
1: देखिए, इस तरह परेशान होने से क्या होगा, शांत रहिए और सोचिए कि इस उलझन से निकलने का अब क्या रास्ता हो सकता है। अरे हाँ हाँ साइमन साहब, एक रास्ता तो है।
0: क्या?
1: आप अपने घर तार भेजिए और कल परसों तक, जब तक उनका जवाब आता है, आप किसी दूसरे होटल में चले जाइए। आपके बटुए में फिलहाल इतने पैसे तो होंगे कि आप कोई सस्ता सा होटल।
0: मिस्टर गोटी, वही तो समस्या है, इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है। दरअसल मैं 1 शिलिंग जेब में डालकर होटल से बाहर निकला था, जो मैंने साबुन में खर्च कर दिया। अब तो जेब में बस ये 2 पेंस पड़े हुए हैं। फिर देखिए, काश मैं होटल से अपना बटुआ लेकर चलता।
1: कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कपड़ों से, बोलचाल से संपन्न ही दिखाई देता है। बेचारा आज कैसी परेशानी में पड़ गया।
0: मिस्टर गोटी, आप क्या सोचने लगे?
1: जी वो
0: समझ गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने मन से किस्सा गढ़कर आपको सुनाया है। यानी इसमें आपका दोष नहीं, ये वाकया है ही इतना अजीब कि कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई है, उसका एक एक शब्द सच हो सकता है। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी है। हाँ हाँ,
0: अच्छा?
1: हाँ, एक बार पेरिस में मैं भी कुछ ऐसी ही भूल कर बैठा था।
0: हो,
1: और मजेदार बात यह है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था।
0: अच्छा?
1: हाँ, हम दोनों ही भुलक्कड़ निकले। गनीमत थी कि हमें इतना याद रहा कि हमारा होटल नहर के किनारे, बस नहर के साथ साथ चलते रहे और किसी तरह होटल पहुंच ही गए।
0: चलिए, तब तो आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया। क्या है मिस्टर गोटी, के अगर मैं आपकी तरह विदेश में रास्ता भूल गया होता तो इतना घबराता नहीं, लेकिन अपने ही देश में मैं।
1: अरे ये आप क्या कह रहे हैं, पराए देश में तो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है।
0: नहीं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं विदेश में होता तो ऐसी स्थिति में अपने दूतावास से जरूर मदद ले सकता था।
1: हाँ,
0: लेकिन यहाँ तो मैं अपने ही देश में हूँ। गोटी साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ।
1: साइमन साहब, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। क्या आपका होटल ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
0: नहीं नहीं, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ आप भी खामा खा इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब तो थेम्स के किनारे मैदान में रात गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब मिस्टर गोटी,
1: हाँ कहिए।
0: हाँ, आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो।
1: हाँ, बताइए, संकोच मत कीजिए, बताइए ना।
0: अब क्या मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सिर्फ 1-2 दिन के लिए, जब तक मैं अपने होटल नहीं पहुंच जाता। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतने कि

0: दो दिन अच्छी तरह बिता सकूं बस।
1: सचमुच ये आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे पैसे जरूर लौटा देगा।
0: मिस्टर गोटी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साइमन साहब। मुझे पूरा विश्वास है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।
0: हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस भलमन साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कुछ सोचने लगे?
1: हाँ, इस बार जरूर कुछ सोच रहा हूँ। साइमन साहब
0: जी,
1: आपने कहानी तो विश्वास करने लायक सुनाई है,
0: कहानी
1: लेकिन इसमें एक कमजोर कड़ी है। वो खासी कमजोर कड़ी है।
0: मैं कुछ समझा नहीं।
1: साइमन साहब, आप वो साबुन नहीं दिखा रहे हैं जो आपने खरीदा था। मैं वो साबुन देख सकता हूँ?
0: वो साबुन की टिकटिकिया हाँ, मेरी जेब में होनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ। यहाँ इस जेब में इसमें भी नहीं है।
1: कोट की सारी जेबें अच्छी तरह देख लीजिए।
0: वही देख रहा हूँ। नहीं, यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। लगता है वो साबुन की टिकिया भी कहीं खो गई है।
1: खो गई। एक ही दिन में अपना होटल भूल जाना और साबुन भी खो देना,
0: जी
1: ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता साइमन साहब।
0: मेरी बात
1: आपको कोई ठोस कहानी गढ़नी चाहिए थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये कहानी तो फिस हो गई साइमन साहब। अब किसी और आदमी से पैसे ऐंठना चाहो तो कोई ठीक बहाना बनाइएगा, वरना। अरे कहाँ चल दिए साइमन साहब, कहाँ चल दिए? अरे रुकिए तो। बेचारा, कहानी तो बहुत बढ़िया गढ़ी थी। एक एक हिस्सा ऐसा था जिस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेता, लेकिन साबुन खरीदने के प्रसंग ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये प्रसंग ना होता या साबुन की एक टिकिया भी जेब में डाल लाता तो धोखा धड़ी के धंधे में आज उसकी प्रतिभा का सिक्का जम जाता। लगता है इस धंधे में अभी नौसिखिया है। अरे ये मेरे पांव से क्या चीज टकराई? क्या है ये कागज में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज? साबुन की खुशबू भी आ रही। अरे ये तो साबुन की टिकिया है। अरे ये जरूर साइमन की जेब से गिर गई होगी। इसका मतलब उसने सचमुच साबुन खरीदा था। ये तो अनर्थ हो गया। मैं अभी जाकर उस मुसीबत जदा की मदद करता हूँ। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी जाता हूँ।
2: अरे साइमन साहब रुकिए।
0: साइमन साहब, मिस्टर गोटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
0: ये आप क्या कह रहे हैं?
1: देखिए, आप जैसे भले आदमी पर शक किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपकी कहानी की सच्चाई का मुख्य गवाह मिल गया है।
0: गवाह?
1: ये देखिए साबुन की टिकिया। हा? आपकी कोर्ट से गिर गई होगी। देखिए मुझे ये वहीं उसी बेंच के पास पड़ी मिली।
0: हाँ, वो पता नहीं कब जेब से गिर गई। वो परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा।
1: खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे आपकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं एक गिन्नी उधार देता हूँ मैं आपको। ये इससे काम चल जाएगा आपका?
0: जैसा आप ठीक समझे।
1: नहीं नहीं नहीं, आपको दिक्कत हो सकती है।
0: हाँ,
1: मैं आपको दो गिन्नियां दे देता हूँ। हाँ, उम्मीद है अब आपका काम आराम से चल जाएगा। ये लीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भारी मुसीबत से बचा लिया। अब मैं जान। अरे हाँ, आप अपना पता दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके घर आकर ये उधार चुका दूंगा।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। अच्छा, ये लीजिए। ये रहा मेरा कार्ड।

0: थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब इजाजत दीजिए।
1: अच्छा अच्छा। अरे अरे साइमन साहब, ये साबुन तो लेते जाइए।
0: लाइए। थैंक यू वेरी मच।
1: और देखिए अब इसे दोबारा मत खो देना, ये आपके आड़े समय में काम आया है। बाय बाय बाय।
2: बेचारा मेरे इस व्यवहार से कितना खुश हो गया, चेहरे पर निराशा की जगह उत्साह दिखाई देने लगा था। शुरू में मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी बरत रहा था, ये अच्छी बात नहीं थी। मैंने अपनी गलती सुधार ली, ये अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, 8 बज गए। अरे वहां पार्क में फिलिप पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे फौरन वहीं पहुंचना चाहिए। चलता हूं मैं।

0: फिलिप, फिलिप, फिलिप माफ करना, मैं जरा बाजार की तरफ निकल गया था। अब आए, ये तो फिलिप नहीं, कोई और ही साहब है। ओ, ये तो वही बुजुर्ग वार हैं जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ बैठे थे, लेकिन ये बेंच के नीचे झुककर क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्ग वार, लगता है आपका कुछ खो गया है।
1: हाँ, मेरी साबुन की टिकिया खो गई है।
0: क्या, साबुन की टिकिया?
1: हाँ, अब मैंने जो सामान खरीदा था,
0: हाँ,
1: उसमें एक साबुन की टिकिया भी थी, वो कहीं गिर गई।
0: लेकिन वो,
1: मेरा ख्याल है वो यहीं गिरी है, बेंच पर बैठते समय थैला टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा और टिकिया नीचे गिर गई। चिंता न करो, यहाँ गिरी है तो मिल ही जाएगी।
0: इसका मतलब वो साबुन की टिकिया उस धोखेबाज की नहीं, इन बुजुर्गवार की थी। मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी, उस धोखेबाज को साबुन की टिकिया के चक्कर में एक नहीं दो दो गिनियां दे दी। आज ही आज मैं अपना दूसरा नुकसान कर बैठा। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।

श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपने सुना नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों विविध भारती की टीम फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य के घर गई, रिकॉर्डिंग की उजाले उनकी यादों के। तो चलिए सुनते हैं आज वही कार्यक्रम।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के

0: मैं बहुत खुश हूँ
1: जी।
0: मेरे से जो भी होगा पिताजी के बारे में मैं वह कहूंगी
1: जी। बिल्कुल। तो रिंकी जी, हम आपकी आंखों से देखने की आज कोशिश करेंगे महान फिल्मकार बिमल रॉय साहब को। हम बिमल रॉय को एक महान फिल्मकार के रूप में जानते हैं, लेकिन आप उन्हें एक पिता के तौर पर जानती हैं। तो सबसे पहले हम सभी का यही सवाल होगा कि कैसे थे पिता के रूप में बिमल रॉय साहब।
0: मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ
1: जी,
0: क्योंकि पिताजी का जैसा पिताजी मिलना ये छोटी बात नहीं है। और हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं उनके साथ, उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और चाइल्डहुड मेरा, हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था
1: जी,
0: बहुत
1: जी।
0: ही बहुत खुश, हम लोग सब बहुत खुश थे। फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो
1: जी।
0: घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
1: एक रूप ही बदल जाता था।
0: रूप ही बदल जाता था,
1: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते थे
0: जी। सही बात है
1: जी। तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग है, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है या वो इतने महान फिल्मकार हैं?
0: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़े हुए हैं, हम बहुत ही इसमें, मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड
1: जी,
0: ट्रूली ब्लेस्ड
1: जी जी। तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे, और आपकी माताजी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही
0: जी। लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी, और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था
1: जी,
0: शी वॉज ए फोटोग्राफर, और उनके बारे में सब लोग आजकल जानते हैं। उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है, और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने, मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स है उसमें इन सब लोगों को नाम जुड़ता है
1: जी।
0: तो पिता, और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था
1: जी,
0: बहुत सुंदर रिश्ता था।
1: क्या नाम था आपकी माँ का?
0: मेरी माता का नाम था मनोबिना रॉय
1: जी।
0: जी,
1: तो वो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी, और उनका एक व्यक्तित्व था। आपके और भाई बहन भी हैं जो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
0: मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद में दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना, मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ
1: जी। तो रिंकी जी, आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ, किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने पिता के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी, या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी, या उनके साथ जाया करती थी, ऐसा कुछ हुआ कभी?
0: नहीं, पिताजी हमेशा, पिताजी का कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखे।
1: अच्छा।
0: और हम कभी, हमको अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट होता तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था कि वो दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे घर में
1: जी।
0: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो बॉम्बे चली आई, मेरा तब 9-10 साल होगा, तो लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं, क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है
1: जी।
0: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं, इस सब उनका बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे जिंदगी में कि पिताजी के लिए मैंने ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं करती थी।
1: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा,
0: बहुत प्रभाव।
1: तो एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था, कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
0: नहीं, दबाव तो मैं नहीं कहूंगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर, कोई भी कल्चरल कोई भी कल्चरली होता था वो नेहरू को जानते थे पर्सनली।

0: इंदिरा गांधी को जानते थे पर्सनली, तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता ना,
1: बहुत एथिक्स थे,
0: एटीट्यूड, हाँ उनका एटीट्यूड ही अलग था इस सब के बारे में। और हम लोग ने वो ही सीखा है पिताजी, वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी की उम्र बहुत कम था जब चले गए, तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो लिखा था गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका उसका नाम था अमृत कुंभ।
1: अच्छा,
0: अमृत कुंभ के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी था
1: जी।
0: उसको उन्होंने लिया कि उसको वो था, लेकिन उसका शूटिंग करते करते पिता का ये हो गया, कैंसर में भुगते थे, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे
1: जी।
0: हाँ, उनका हाथ में हमेशा सिगरेट होता था, और उनका ये जो सामने का उंगलियां है ना उसमें सब सिगरेट निकोटीन के दाग हो गया था इतना। हाँ, तो उससे उनको दुख भरी बात ये है कि उनको वो कोई हम नहीं छोड़ा सके उसको
1: जी।

0: विमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रहे होंगे?
1: पिताजी ने जो उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन विमल रॉय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि असली गुरु का हिसाब जो गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
0: जी,
1: सबको
0: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी,
1: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ड बंगाली।

0: वाले लिटरेचर से उन्होंने लिया है, जैसे सुजाता
1: जी
0: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से, हाँ तो इसलिए ना पिता खाली दो बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे, तो उसको जो फिल्म बनाए पिताजी उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था,
1: जी।
0: हाँ उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो दो बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है, यहाँ वहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसी इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह के घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
0: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी इसका बहुत असर है
1: जी,
0: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के, तो वहां से उनको निकाला गया था, तो वो भूल वो उनका जो वो दर्द था वो ट्रेजेडी था, हाँ तो वो भूल नहीं सके थे, तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गया है। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था वो भूल नहीं पाए कभी भी, हमेशा चाहते थे कि जाए हम जब ईस्ट बंगाल चलेंगे, वो सोचते थे कि हम जाएंगे वहां पे, तो उसका वो ट्रेजेडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया
1: मन में रहा और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन के रूप में उतरा।
0: जी जी
1: जी। तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था, तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
0: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशन कोई नहीं होते थे फिल्म विल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूंगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगी सब फिल्म सुजाता बंदिनी सबको लेके जब लोग देखते हैं ना तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी, उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे प्रभावित थे लिटरेचर बंगाली लिटरेचर की।
1: जी जी जी। तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है।
0: जरूर, मैं तो बोलूंगा ये बहुत सच बात है, हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
1: जी,
0: इतना उसका प्रभाव था।
1: हाँ,
0: एक इंडियन फिल्म कोई स्टार नहीं उसमें, फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी तो मैं आपको बता ही नहीं सकते, आप वो देखने वाली एक्सपीरियंस करने वाली चीज थी, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ वहाँ फेस्टिवल, मैंने एक अटेंड किया और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये।
1: जी, तो रिंकी जी जब बात दो बीघा जमीन की चल रही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लें, आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब थे
0: जी,
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ, तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लायक कोई रोल नहीं था
0: हाँ।
1: लेकिन ठीक है, हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ
0: जी।
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी।
0: और ये लोरी बहुत, हाँ आप बता
1: ये लोरी बहुत, हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी,
1: कहाँ पूछे मुझे पता नहीं कौन से स्टूडियो, शायद दादरा में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह,
0: सुबह चार बजे रिकॉर्डिंग। तो लता मंगेशकर की गाई हुई लोरी है हाँ। तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई,
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग
0: जी जी,
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: नेचुरली
0: हाँ,
1: उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगे मतलब?
1: नहीं नहीं, बहुत टेक नहीं, वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे। फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे, एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार।
1: और एक चीज, फर्स्ट टाइम साहिर लिद्वानी ने गाना लिखा था उसमें
0: हाँ, जी जी,
1: और एस डी बर्मन
0: साहब का संगीत हाँ। है और इतना यूनिक संगीत है और गाने के बोल जो है आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है, गीत तो पसंद है ही, और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है उसका।
0: जी जी,
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म, और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया, और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है, आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बनी थी पिताजी उसका कैमरामैन थे।
0: अच्छा
1: हाँ, बड़ुआ के देवदास का।
0: जब केएल सहगल साहब जिसमें
1: केएल सहगल थे, पिताजी उसका मेन ये थे, कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: तो उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में, हमारे घर में दारू शारू का कुछ यही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक पियक करके ऊपर
0: जी
1: लेकिन ये आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर,
0: बहुत शानदार,
1: बहुत सुंदर गाने हैं।
0: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन बिमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है।
1: जी, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
0: बिल्कुल, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या बिमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
1: मेरा उम्र कुछ ज्यादा नहीं था, तब 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारों का अभिनय जो है सुचित्रा सेन
0: जी,
1: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था।
0: अच्छा।
1: दूसरा हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी,

0: उनका शादी हुआ था हमारे घर में
1: जी।
0: तो जब एक दफे उनको फिल्म में उतरना था तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग बहुत हंसते थे कि पिताजी को और फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा।
1: हाँ।
0: क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं।
1: हाँ।
0: पारो का ये जो किया था,
1: जो भी नहीं था।
0: हाँ।
1: वो कोई और कर ही नहीं सकता था, ऐसा बिमल रॉय साहब का
0: कोई
1: मानना
0: कर नहीं सकता था।
1: और वो अद्भुत सुंदर लगी है उसमें, और ये पात्र कितना जीवंत हो गया, पारो की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज भी याद की जाती है।
0: जी,
1: लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के?
0: लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था। लेकिन मेरा हिसाब से पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो समझे जब ये है ना समस्या
1: व्यवस्थाएं थी उस वक्त।
0: हाँ, उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका जो ये है ना माहौल जो है वो बहुत बहुत इम्प्रेस करता है
1: जी,
0: बहुत ज्यादा
1: जी।
0: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंती माला भी जस्ट उसके पहले मधुबोध किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थे ना, इसलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
1: बहुत सुंदर है।
0: बहुत,
1: तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे बिमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
0: नहीं नहीं नहीं, पिताजी जो काम करते काम को अलग ही रखते थे वो घर से। हमारा घरेलू जो ये है ना
1: वो अलग था,
0: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज तक
1: जी।
0: कि इतना डिसिप्लिन थे, उनको कहाँ पे कब जाना है क्या करना है सब उनको बहुत पता था। हाँ, तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ कि हमको भी पिताजी का शायद समय बिताने को मिला। हाँ, तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है, बंदिनी के बाद तो उनका बंद ही हो गया काम
1: जी।
0: हाँ, तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे
1: जी। जी, तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
0: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है
1: जी,
0: तो देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता था, तो पिताजी हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ उसका स्टोरी का तो एडल्ट, उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाकर कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
1: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ये फिल्म देखी होगी। तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें, एसडी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
0: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
1: आगे तेरी मर्जी जी, बिल्कुल।

0: तो आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था, बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा। पिताजी का ये भी था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाई।
0: अच्छा।
1: हमको लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मैं मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी,
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना था। घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था। तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था, प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गूंथे हुए थे।
1: एकदम।
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे और
1: फिल्म दुनिया में
0: सबसे बड़ी बात है कि फिल्म दुनिया में रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना, विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर आना देखते थे। मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी हमारे बिमल रॉय में, बिमल रॉय फिल्म्स का जो लोगो है, कौन सा है आपको मालूम है? कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे।
0: जी जी,
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है टावर है, वो उनका फिल्म का ये है
0: लोगो।
1: तो ये भी कोई सोचने लायक बात है ना।
0: जी जी। जब बिमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता बिमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है?
1: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना
0: जी,
1: हमेशा फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाए बंगाली लिटरेचर से। सुजाता के बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी, फॉरेन फेस्टिवल, जहाँ पे सुजाता पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा, लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के। लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते सुजाता देख के, उनको जो वो जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो ये है रिलेशनशिप है, उसको लेके वहाँ यूरोप में तो एकदम सब जो आए थे सबको सब रो रहे थे देख के। तो मुझे ये भी खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
0: इस विषय को उठाने का सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रहे होंगे आपके पिता के?
1: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूज किया उन्होंने, जरूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज किया।
0: उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी ये समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना, इस विषय को बहुत ही बोल्ड विषय था और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज दी कि किस तरह से माँ और बेटी के किरदार को जीवंत किया और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना। इसके पीछे क्या कुछ खास कारण?
1: नूतन पिताजी के सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे
0: जी।
1: नूतन की जो खास फिल्म है सुजाता और बंदिनी, तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का, तो वो नूतन को साइन करने को गए। तो नूतन ने बोला, दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी।

0: तो पिताजी ने बोला कि वो क्या बात है
1: जी।
0: तो बोले हम प्रेग्नेंट है, तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट है तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूंगी बंदे ने, तो उनका हस्बैंड जो थे उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला विमलदा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए तो फिर नूतन आपके साथ काम करेगी। तो वही हुआ बात
1: जी जी,
0: शी वॉज प्रेग्नेंट में शी वॉज शूटिंग बंदी ने
1: जी। और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया, और उसके बाद तो वो मतलब महान अभिनेत्रियों की एक लाइन में खड़ी हो गई। आप लोग गए इस फिल्म को देखने फिल्मी पर्दे पर?
0: हम लोग गए थे हॉल में देखने के लिए, मुझे याद है यहाँ पे जो ओपेरा हाउस है ना
1: जी,
0: ओपेरा हाउस में रिलीज हुई थी और सिल्वर जुबली किया था।
1: तो चलिए इस फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए।
0: श्योर जरूर।
1: चलिए तो फिल्म सुजाता का एक गीत सुनते हैं।
0: हाँ।

0: चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स, जरूर, क्योंकि पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मैं तो, मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है, बहुत ही अच्छा है उन्होंने पिताजी का गाने पिक्चराइजेशन, एक स्पेशल ये था उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और हाँ ये सभी रहे,
1: उनके पसंदीदा जो थे ना
0: संगीतकार भी एसडी बर्मन और सलील चौधरी साहब,
1: संगीतकार सलील चौधरी और एसडी बर्मन,
0: बहुत सारी फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलील चौधरी साहब ने उनकी जो है संगीत में ढाली है, और एसडी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं है याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरी बंगाली लिटरेचर से था
0: जी।
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा, हाँ, मुझे उस कहानी को
1: तो मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्याणी का स्टोरी है, वो जो है ना, जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरासंध करके, जिनका नाम था जरासंध, पेन नेम, तो उन्होंने लिखा था, तो उनको जो ये स्टोरीज कलेक्शन था उसमें कल्याणी का स्टोरी पिताजी ने चूज किया था।
0: तो उस वक्त उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय की ये समसामयिक कहानी थी, घटना थी। तो आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
1: हाँ, पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को।
0: अच्छा,
1: जैसे राज कपूर है ना,
0: हाँ,
1: राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाता है। पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको ये था, उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बताया था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को इस नूतन का है तो इतना इतना ये करे, हाँ ये ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता था
0: जी। तो बंदिनी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया ये बहुत लाजवाब था।
2: हाँ, ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में ऐसे असिस्टेंट था, तो एक गाने का कहीं जरूरत हुआ तो शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया, ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदिनी, मोरा गोरा अंगलेरा
0: जी।
2: अच्छा, तो सुन, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी उस जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारे प्रोडक्शन में था, हाँ, वो था नॉट मोरा गोरा अंगलेरा, वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया फिर, दैट इज हिज फर्स्ट सॉन्ग फॉर बिमल रॉय प्रोडक्शंस
0: जी।
2: हाँ, पिताजी का बोलने पर फिर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम से ज्वाइन कर लिए।
0: चलिए, तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: उन्होंने जब ये चूज किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बंधनी के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है, उसका केस हिस्ट्री था, ये रियल केस हिस्ट्री। हाँ, तो इसीलिए बहुत इसको बहुत माने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। तो वही हम मधुमती के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमती का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमती का जो मधुमती लिखा गया था खाली पिताजी को प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी वे नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको घटना लिखा था पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक,
1: बिकॉज
0: ऑफ ऑल द कास्टिंग, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ऐसे बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था, तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा, पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था। तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला से ठीक है मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो, हीरोइन, हाँ
1: वो सब था जो एक फिल्म में होना चाहिए,
0: वो जो था वो सब फिल्म में होना चाहिए। तो मधुमती उसी हिसाब से बना गया
1: जी। तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त?
0: हाँ, हाँ,
1: में आप गीत संगीत तो सुन सकते थे, ये माहौल तो था घर में।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं, आप कहें। हाँ।

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुने। और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है, एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आज तक?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइश्यू
0: जी,
1: उसको रिस्टोर करना। तो मैंने काफी एक यहाँ पे है, रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है, वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी। तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी
1: बातें।
0: कौन-कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमती, देवदास
0: जी,
1: बंदिनी और 2 बीघे जमीन
0: जी,
1: ये 4। इधर है एक जो रिस्टोरर है शिवेंद्र डूंगरपुर करके।
0: अच्छा।
1: तो शिवेंद्र ने इसको किया है, रिस्टोर किया है 4 फिल्में। टेक्स्ट चेयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी, DVD नया DVD आ जाएगी।
0: अच्छा,
1: सबकी। हाँ,
0: बहुत बड़ी एक इस विरासत को आपने संभाला है और इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक। तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?
1: ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है
0: जी।
1: मुझे तो अभी भी मधुमती देख, कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमती, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूँ, यू नो, इतना उसका असर है। और एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ।
0: हाँ,
1: ये तो मधुमती के साथ है। तो क्योंकि 2 बीघे जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है। हाँ, लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमती और 2 बीघे जमीन दोनों।
0: तभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे मेरे पिता ने उस वक्त किया?
1: नहीं, ये कभी नहीं आया, बल्कि मैंने सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
0: अच्छा।
1: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है फिल्म, और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है
0: जी। तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनाई है आपने।
1: मैंने दो ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया है NGO के साथ
0: जी,
1: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके। और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूंगी
0: जी,
1: कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है, वो वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री।

0: कमेंट्री, वो फेस्टिवल्स में भी गई है और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, डीवीडी में है वो।
1: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके बारे में आपने काफी और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है। काफी लंबे समय तक आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं। बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी।
0: मैंने ज्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज को लेके, और दो एक पिताजी पे लिखा है, दो एक मेरे पास दो किताबें हैं, जो एक तो है मधुमती, खास मधुमती का क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है
1: जी।
0: वो पब्लिश हुआ है, और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर, ये दोनों बहुत खास है।
1: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला जब ये किताबें दुनिया के समक्ष गई, लोगों के खासतौर से महिलाओं का?
0: बहुत अच्छा, इट इज वेरी बिग, ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
1: जी हिंदी भाषाओं में।
0: हाँ, कई भाषाओं में ट्रांसलेशन है।
1: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
0: नहीं नहीं, मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने कॉन्शियसली मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए फिल्में। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था, वो मुझे करना ही था, क्योंकि उसके लिए मेरे फंडिंग मिली, गवर्नमेंट फंडिंग।
1: अच्छा।
0: हाँ, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, इसलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया। और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी इतना। मैं कॉन्शियसली पिताजी का जो आइडियल्स है, उनका जो ये है फिलोसफी है, उसको फॉलो करने का मैं कोशिश करती हूँ।

0: अगर आपको अपनी पूरी रचनात्मक यात्रा, जिसमें पत्रकारिता है, किताबें हैं, सिनेमा है और बिमल रॉय की विरासत है, को एक वाक्य में देखना हो तो आप क्या कहेंगे कि आप वास्तव में किसकी आवाज दर्ज कर रही हैं? फिल्म की, स्त्रियों की, परिवार की, या उन लोगों की जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है?
1: आपने जो कहा ये बहुत सही बात है, जो जिसका आवाज दबा दिया गया है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम, जो वॉइसलेस है उनके बारे में मेरा ये हमेशा कोशिश रहा कि मैं उसी को वही करूं।
0: जी, और उसमें आप लगी भी हैं आज भी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आप लगातार अपनी इस यात्रा को बनाए हुए हैं। रिंकी भट्टाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम रेनिक्स 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए हम आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा की शेष रहे और कल की। पहली सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले आज की सभा की शेष रहे मुख्य कार्यक्रम। अब से कुछ ही पूर्व में ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बच्चों के मुख से। कार्यक्रम बच्चों के मुख से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी, किताबों सा कोई दोस्त नहीं और मच्छर जनित रोगों से बचाव विषय पर चर्चा। भेंट वार्ता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे हिंदी दिवस पर भावना दवे से बातचीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

अजमेर केंद्र से किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल शाम 7 बजे। शाम 7:30 पर आप एफएम ट्रांसमीटर से जुड़े श्रोता सुनेंगे दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषीय बॉल बाय बॉल कमेंट्री का सीधा प्रसारण।

समाचार संध्या आप सुनेंगे रात 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रातों 10 बजे। रात 11 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए एक नजर हमारी कल के प्रातकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह हमारी प्रातकालीन रेडियो तरंगों का आगाज होगा प्रातः के 5:51 पर। प्रातः 6 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अंतरिम मानस गाना सुनिए प्रातः के 6:30 पर, प्रातः 6:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम खेती ने बात का समय रहेगा प्रातः के 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 6:50 पर।

तो 7:10 पर आप सुनेंगे हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। कार्यक्रम कुछ देर से का समय रहेगा प्रातः के 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 8:45 पर।

0: संस्कृति और पहचान से जुड़ी है हमारी प्यारी हिंदी भाषा की। इस दिवस पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है भावना दवे, जो कि वर्तमान में महात्मा गांधी विद्यालय हाउसिंग बोर्ड में हिंदी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। नमस्कार भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस के अवसर पर श्रोताओं से जुड़ना मेरे लिए भी खुशी की बात है।
0: भावना जी, सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगी कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है?
1: 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है।
0: जी भावना जी, अक्सर कहा जाता है कि भाषा हमारी पहचान होती है, हिंदी के संदर्भ में आप इसे किस तरह देखती हैं?
1: हाँ तो प्रीति जी, भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सहज माध्यम है। हिंदी ने भारत की विविध संस्कृतियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी में साहित्य, कविता, कहानी, पत्रकारिता, सिनेमा और लोक भाषाओं की समृद्ध परंपरा है। इसलिए हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक जुड़ाव का माध्यम भी है।
0: देखिए भावना जी, आज का समय डिजिटल युग का है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी भाषा को भी बदल दिया है। क्या आपको लगता है कि इसका हिंदी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है?
1: बिल्कुल प्रीति जी, डिजिटल माध्यमों ने हिंदी के लिए नए अवसर खोले हैं। आज लोग हिंदी में ब्लॉग लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर हिंदी में अपनी बात रख रहे हैं। तकनीक ने हिंदी को दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने में मदद की है, लेकिन एक चुनौती भी है। हमें डिजिटल दुनिया में हिंदी लिखते समय भाषा की शुद्धता और गरिमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: यानी सोशल मीडिया पर हिंदी का प्रयोग करें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ।
1: बिल्कुल प्रीति जी, भाषा में नए शब्दों का आना स्वाभाविक है। हिंदी दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अपनाती रही है, लेकिन अपनी भाषा की मूल संरचना, शब्द संपदा और सुंदरता को समझना भी जरूरी है।
0: भावना जी, आजकल युवा बातचीत में हिंदी के साथ अंग्रेजी के शब्दों का काफी इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंग्लिश। क्या यह हिंदी के लिए खतरा है?
1: प्रीति जी, इसे सीधे खतरा कहना उचित नहीं होगा। भाषाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक प्रक्रिया है। जरूरत इस बात की है कि युवा हिंदी को लेकर हीन भावना न रखें। वे जहां हिंदी उपयुक्त हो वहां सहजता और आत्मविश्वास के साथ हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए।
0: बहुत सुंदर बात कही आपने। कई बार बच्चे और युवा हिंदी बोलने में झिझकते हैं, खासकर तब जब आसपास अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हाँ, मैं बच्चों से यही कहूँगी कि किसी भी भाषा को सीखना अच्छी बात है। अंग्रेजी सीखें, दूसरी भाषाएं सीखें, लेकिन अपनी मातृभाषा या अपनी परिचित भाषा को कमतर न समझें। एक से अधिक भाषाएं जानना हमारी ताकत है। किसी एक भाषा को दूसरी से श्रेष्ठ मानना जरूरी नहीं है। हिंदी में पढ़ें, हिंदी में लिखें, हिंदी साहित्य को जानें और अपनी बात हिंदी में आत्मविश्वास से रखें।
0: अब जैसा कि आपने हिंदी साहित्य की बात की, तो क्या आज की युवा पीढ़ी को साहित्य पढ़ने की जरूरत है?
1: बिल्कुल प्रीति जी, साहित्य हमारी संवेदनशीलता को विकसित करता है। कहानी और कविता हमें अलग अलग परिस्थितियों और लोगों को समझने का अवसर देती है। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन जैसे अनेक रचनाकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आज युवाओं के लिए हिंदी में डिजिटल साहित्य और ऑडियो बुक जैसे नए माध्यम भी उपलब्ध हैं। इसलिए पढ़ने की आदत को अपने तरीके से बनाए रखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आम व्यक्ति अपने स्तर पर क्या कर सकता है?
1: प्रीति जी, बहुत छोटे छोटे प्रयास किए जा सकते हैं। घर में बच्चों से हिंदी में बातचीत करें, हिंदी की अच्छी किताबें और पत्रिकाएं पढ़ें, हिंदी में लिखने का अभ्यास करें, मोबाइल और सोशल मीडिया पर हिंदी का सकारात्मक उपयोग करें और हिंदी साहित्य, कविता और लोक भाषाओं को जानने की पूरा प्रयास करें। और सबसे जरूरी है, हिंदी बोलने या लिखने में झिझक महसूस न करें।
0: जी भावना जी, अब अंत में आप हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे बच्चों को और श्रोताओं

0: को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हाँ प्रीति जी, मैं बच्चों और श्रोताओं को यही संदेश दूंगी, भाषा पर गर्व करें लेकिन दूसरी भाषाओं का सम्मान भी करें। हिंदी को अपनाना किसी दूसरी भाषा का विरोध करना नहीं है। हमें हिंदी को ज्ञान, तकनीक, शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना होगा। हिंदी तभी मजबूत होगी जब हम उसे केवल एक दिन याद नहीं करेंगे बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में सहजता और सम्मान के साथ इस्तेमाल करेंगे। मैं चार पंक्ति बोलूंगी हिंदी के लिए। माँ भारती के माथे की सबसे चमकीली बिंदी है, जान से भी प्यारी हमको अपनी भाषा हिंदी है।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, अपनी भाषा हिंदी है। वो सुंदर संदेश, सचमुच भाषा तभी जीवंत रहती है जब वह हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहे। तो भावना जी, आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत ही अच्छी तरह से भाषा के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख तेरी समझदारी का फल।
4: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: तो बच्चों, अभी आपने हिंदी दिवस पर भावना दवे से बातचीत सुनी। अब बच्चों, कल है गणेश चतुर्थी, यानी 14 सितंबर को ही मनाएंगे। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, ज्ञान और शुभता का प्रतीक माना जाता है। उन्हें प्यार से गणपति बप्पा भी कहते हैं। मान्यता है कि किसी भी काम की शुरुआत गणपति बप्पा की पूजा से की जाती है, जिससे हमारे सारे काम निर्विघ्न पूरे होते हैं, क्योंकि बप्पा विघ्नहर्ता भी है, यानी बाधाओं को दूर करने वाले। बच्चों, गणेश जी की संपूर्ण प्रतिमा हमें बहुत सुंदर सीख देती है। उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। उनका छोटा मुंह कहता है कि कम और सोच समझ कर बोले, और उनका बड़ा पेट हमें हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करने की सीख देता है। गणेश चतुर्थी पर घरों और पंडालों में गणेश जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन आज हमें यह भी याद रखना है कि उत्सव के साथ प्रकृति की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मिट्टी की प्रतिमा और पर्यावरण के अनुकूल ही सजावट को हम प्राथमिकता दें। गणपति बप्पा सभी को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और प्रकृति की रक्षा करने की शक्ति दे। तो बच्चों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। तो ये तो थी चर्चा, हम चलते हैं गीत संगीत की ओर। सुन लेते हैं प्यारा सा गीत और संदेश।

0: फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
0: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल होंगे चोरी।
0: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रहे तेरी समझदारी का फल।
2: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: फिर से स्वागत है बच्चों आपका कार्यक्रम में। अब हम बात करते हैं मच्छर जनित रोगों से बचाव, सतर्कता ही सुरक्षा। प्यारे बच्चों, बारिश का मौसम आते ही हरियाली के साथ मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है और ये मच्छर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें घर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना है। कूलर, गमले, टायर, छत की नियमित सफाई करनी है। मच्छरदानी का प्रयोग करते रहना है। पूरी रास्ती के कपड़े पहनने चाहिए। बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द या कमजोरी जैसे जो भी लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। याद रखें बच्चों, मच्छरों को पनपने से रोकना ही मच्छर जनित रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। अब हम बात कर लेते हैं अगले विषय की, किताबों सा कोई दोस्त नहीं। किताबें पढ़ाएं और कहानियां सुनाएं। बच्चों, आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कभी आपसे नाराज नहीं होता, कभी आपका साथ नहीं छोड़ता और हर बार आपको कुछ नया सिखाता है? जी हाँ, ऐसा दोस्त है किताब। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। जब हम किताब खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम एक नई दुनिया की सैर पर निकल पड़े हैं। कभी कहानी हमें जंगल की सैर कराती है, कभी कोई रोमांचक किस्सा हमारी कल्पना को उड़ान देता है और कभी ज्ञान की किताब हमें दुनिया के बारे में नई नई बातें सिखाती है। अब आप बोलोगे कि आजकल तो हम मोबाइल और टीवी पर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, लेकिन किताब पढ़ने का अपना अलग आनंद है। किताब पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति, भाषा और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। और बच्चों, सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं, कहानी सुनना और सुनाना भी बहुत मजेदार है। आप अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से उनके बचपन की कहानियां सुन सकते हैं, फिर उन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। तो क्यों ना आज से एक अच्छी आदत शुरू करें, हर दिन कुछ समय किताब पढ़ें और सप्ताह में कम से कम एक कहानी जरूर सुने या सुनाए। याद रखिए बच्चों, किताबें देती है ज्ञान का उजियारा, इनसे सुंदर नहीं कोई दोस्त हमारा। पढ़ो किताबें, सुनो कहानी, इनसे बढ़ती समझदारी। तो बच्चों, आज ही अपनी पसंद की कोई किताब उठाइए, उसके पन्ने पलटिए और निकल पड़े एक नई कहानी की दुनिया में। यह थी चर्चा, फिर से सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: कई साल पहले की ये बात है।
1: बोलो माँ, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: कहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त,

तो बच्चों इसी गीत के साथ समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो दीजिए अनुमति आपकी दीदी प्रीति यादव को फिर मिलने के वादे के साथ। जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बच्चों के मुख से एफएम बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर के स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे

0: विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
0: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज, बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरूंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और

0: कि उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही। चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया, जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:28 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा की

0: Allí.
1: आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदले, आगे बढ़े, ले आए आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
3: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
4: एक चाबी है CKYC ID।
3: CKYC मतलब
4: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
3: वाह, RBI कहता है
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन संपन्न। प्रदेश के 309 नगर निकायों के चुनावों के तहत कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी, रैली और विजयी जुलूस पर रोक रहेगी। रामदेव जयंती पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, गणेश चतुर्थी का पर्व कल, प्रथम आराध्य की आराधना को लेकर तैयारियां जोरों पर। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट का फाइनल आज भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। दो दिवसीय इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में अपने संबोधन में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का एक इकोसिस्टम है और दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं देते हुए सभी परिणामों को समय सीमा के भीतर ऐसे कामों में बदलने की जरूरत पर जोर दिया जिनका जमीनी स्तर पर असर दिखाई दे। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिक्स का ढांचा कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर असल जिंदगी में ठोस असर डाले।
6: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
5: गौरतलब है कि ये शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखा गया था।

0: प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के चुनावों के तहत कल मतगणना की जाएगी। स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में कैद 38,889 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला दोपहर तक आने की उम्मीद है। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली वोटों की गिनती को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद मतगणना को पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मतदान कार्मिकों को पूरी तैयारी के साथ समय पर मतगणना केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र पर अधिकृत प्रवेश पत्र धारी को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। मतगणना के दिन विजय जुलूस और रैली निकालने पर रोक रहेगी। कल गणेश चतुर्थी के आयोजनों को देखते हुए भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं भड़काऊ नारों और समर्थकों की भीड़ इकट्ठी करने पर रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में संपन्न मतदान के पहले दौर में 162 निकायों में 76.42% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 147 नगर निकायों में करीब 71% मतदाताओं ने वोट डाले। 21 सितंबर को निकायों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि देश में लगभग 87,000 स्वच्छता कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट PPE प्रदान की गई है। मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि कामकाज के सुरक्षित माहौल और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 76,000 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि 983 स्वच्छता कर्मचारियों के लिए लगभग 34 करोड़ रुपए की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है। रेलवे ने अगस्त 2026 के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की शानदार बढ़त दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने 5 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए गए हैं। इसके बाद कुल कार्गो टर्मिनलों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि बीते महीने 14 अमृत भारत विशेष ट्रेनों को नियमित सेवाओं में बदल दिया गया, जिससे देश में कुल अमृत भारत सेवाओं की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व कल परंपरागत श्रद्धाभाव के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रथम आराध्य की पूजा अर्चना को लेकर लोगों में विशेष उल्लास देखने को मिल रहा है। गणेश मूर्तियां और पूजन सामग्री खरीदने को लेकर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। मिट्टी और पत्थर से बनी मूर्तियों के साथ ही गोबर और जूट की इको फ्रेंडली मूर्तियां भी प्रचलन में हैं। गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव के आयोजनों की भी कल से विधिवत शुरुआत होगी। घर घर गणपति बप्पा की चौकियों की स्थापना के साथ ही जगह जगह गणेश पंडाल सजाए जा रहे हैं। इससे पहले आज पूर्व संध्या पर प्रदेश भर के गणेश मंदिरों में आकर्षक रोशनी की गई है। जयपुर के गढ़ गणेश, रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश, कोटा के खड़े गणेश, अजमेर के खोड़ा गणेश, पाली के सिद्धपीठ गणेश मंदिर और बीकानेर के किला स्थित मंदिर सहित सभी छोटे गणेश मंदिरों में गौरी पुत्र के पूजन और अभिषेक को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। राजधानी के मोतीडूंगरी मंदिर में आज गणेश जी को मेहंदी चढ़ाई गई। यहां कल के आयोजन को देखते हुए मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भर रहे मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अभयारण्य से होकर गुजरने वाले रास्ते में लोगों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन भी सतर्क मोड़ पर है।
1: त्रिनेत्र गणेश के दरबार में भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पदयात्रियों और भक्तों के आने का यह सिलसिला रात भर चलेगा। कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुबह मंगला आरती और दोपहर में

0: कुंभ की झांकी मेले का मुख्य आकर्षण रहेंगे। पुलिस और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिजली, पानी, चिकित्सा, रसद के विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे की ओर से मेला स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि परिवहन विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन से गणेश धाम तक रियायती दरों पर बसें चलाई जा रही है। भगमार संगठनों की ओर से भी अनेक भंडारे लगाए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: भाद्र माह की द्वज पर आज लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। जैसलमेर के रामदेवरा स्थित मंदिर में सालाना मेला पूरे परवान पर है। सुबह पंचामृत अभिषेक और शिखर पर ध्वजारोहण के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई। दशमी तिथि तक चलने वाले इस मेले में राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामसा पीर के जयकारों के साथ पहुंच रहे हैं। रामदेव के प्राकट्य दिवस पर जोधपुर के मसूरिया स्थित बाबा बालीनाथ जी की समाधि पर भी आज मेला भर रहा है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि रामदेवरा जाने से पहले श्रद्धालु यहां माथा टेक कर आगे बढ़ते हैं।
2: बाबा रामदेव जी का मेला उनके गुरु बालीनाथ जी के समाधि स्थल जोधपुर के मसूरिया मंदिर से शुरू हुआ। सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ मेले का औपचारिक आगाज हुआ। 108 दीपों से महाआरती की गई और 108 किलो पंचमेवे के लड्डुओं का भोग लगाया गया। समाधि स्थल पर बाबा रामदेव जी अपने गुरु बालीनाथ जी से भेंट करते हुए तस्वीर उकेरी गई, जिस पर सोने चांदी का वर्क कर पूजन किया गया। बाबा के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु दिन भर से मंदिर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि बाबा रामदेव जी के रूणीचा धाम जाने से पहले जोधपुर स्थित गुरु बालीनाथ जी की समाधि के दर्शन करने से यात्रा सफल होती है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना कल से ड्रोनोथॉन 2026 आयोजित करेगी। 3 दिन के इस ड्रोनोथॉन में भारतीय उद्योग जगत की कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों का विकास, परीक्षण और प्रदर्शन करेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को मानव रहित हवाई प्रणालियों और ड्रोन रोधी प्रणालियों में अपनी क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। ड्रोनोथॉन के जरिए मौजूदा जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान तलाशने और उनकी युद्धक प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलेगी। आयोजन को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाले इस मैच में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के कप्तान होंगे, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला गुरुवार को होगा। वहीं एशिया कप के महिला T20 क्रिकेट फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में रात 8 बजे से खेले जाने वाले मैच में भारत ग्रुप ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा है। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया था, जबकि श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्न हुआ। प्रदेश के 309 नगर निकायों के चुनाव के तहत कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी, रैली और विजयी जुलूस पर रोक रहेगी। रामदेव जयंती पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास। गणेश चतुर्थी का पर्व कल, प्रथम आराध्य की आराधना को लेकर तैयारियां जोरों पर। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट का फाइनल आज भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। नगरीय निकाय चुनाव के तहत जिले के 6 निकाय क्षेत्रों डीग, कामा, पहाड़ी, सीकरी, कुम्हेर और ब्रजनगर में मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। मतगणना कल होगी। इन नगरीय निकायों में कुल 1,17,885 मतदाताओं में से 1,257,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल मिलाकर जिले में कुल 85.5% मतदान दर्ज किया गया। साइबर अपराधों से बचाव के लिए

0: महीने में साइबर सुरक्षित राजस्थान जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला स्तर पर अभियान की निगरानी कर रहे हैं। अभियान के तहत पुलिस शिक्षण संस्थानों में व्याख्यान, कार्यशालाएं, प्रश्नोत्तरी, सेमिनार और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर साइबर सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों और पर्यटन स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, ऑडियो वीडियो संदेश और साइबर जागरूकता स्टॉल भी लगाए गए हैं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिले को हरियालो राजस्थान के तहत 6 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे पूरा करते हुए अब तक 12 लाख से भी अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जिला वन अधिकारी सुरेश मिश्रा ने बताया कि जिले में 300 हेक्टेयर से भी अधिक का ग्रीन कवर बनाया जा चुका है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही एक जिला एक वृक्ष योजना के तहत विशेष रूप से अर्जुन के पौधों को आम लोगों के बीच बांटा जा रहा है, ताकि औषधीय और छायादार वृक्षों की संख्या में इजाफा हो सके। जिले के 220 पंचायतों में 440 अमृत पोषण वाटिकाएं विकसित करने की भी योजना है। इस योजना के तहत बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जाएगा, साथ ही महिलाओं की आजीविका भी बढ़ाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि इन वाटिकाओं में ताजी जैविक सब्जियां, फल और औषधीय पौधे उगाए जाएंगे। इनका उपयोग मिड डे मील और महिलाओं तथा बच्चों के पोषाहार में होगा। विभाग आजीविका समूहों और ग्राम पंचायतों के साथ बैठक कर स्थान का चयन और कार्य योजना को अंतिम रूप देगा। मौसम बदलने के साथ ही इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों के मामले जिले में बढ़ गए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वाइन फ्लू की दवाएं, आवश्यक जांच और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंघल ने बताया कि समय रहते लक्षणों की पहचान और सावधानी बरतने से स्वाइन फ्लू के संक्रमण से बचा जा सकता है। तेज बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी, सिर दर्द और मांसपेशियों में तेज दर्द स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षण हैं। जिले में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने प्रभावित इलाकों में पशुओं की आवाजाही रोकने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर भावना यादव ने पशुपालकों से अपील की है कि बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र को सूचना दें, पशु बाड़े और उपकरणों की सफाई रखें तथा मृत पशु का सुरक्षित निस्तारण करें। वहीं पशुपालन विभाग ने जिले में पशु औषधि विक्रय केंद्र शुरू करने की तैयारी की है। इन केंद्रों पर पशुओं के उपचार के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं बाजार की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही पशुपालकों को मिनरल मिक्सचर, पशु पूरक आहार और अन्य जरूरी पशु चिकित्सा सामग्री भी एक ही स्थान पर मिल सकेगी। जिले में पिछले दिनों कई दिनों से बारिश का दौर बना हुआ है। कई इलाकों में भारी बरसात होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर किसानों को खरीफ की फसल की चिंता सता रही है। ज्वार और बाजरे की पकी हुई फसलें बेमौसम की बारिश से खराब होने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी कटी हुई फसलों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर सहेज लें, ताकि खराबी की आशंका कम हो सके। डीग जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपे से सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो ब्रिक्स भगत देशा रो समूह नी बल्कि समाधान रो इको सिस्टम है। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन पूर्ण। प्रदेश रा 309 नगर निकाय चुनाव रे तहत काले होने वाला वोटा की गिनती री सभी तैयारियां पूरी। रैली अरजीत रा जोश माथे रूख रे वेला। रामदेव जयंती माथे आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव। गणेश चतुर्थी रो त्योहार काले पहला आराधेरी आराधना ने लेर तैयारियां जो रामत है। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट रो फाइनल आज भारत श्रीलंका रे बीच दुबई में खेलो जाएला।

0: তারারে সাথে মহেশম্ভু সিং আর আবে সমাচার বিগতবার নবী দিল্লি মায় ব্রিক্স দেশার সম্মেলন আজ কামিয়াব পূরণ পুরো বেগিও দো দিন রো ই মহত্ব সম্মেলন রে দৌরান নই দিল্লি ঘোষণা পত্র আপনাই জিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাপন জলসা মায় বোলতা প্রতিভাগী দেশারি ভাগিদারি সারু আভার জতায়ো প্রধানমন্ত্রী কয়ো কে ব্রিক্স ফগত দেশারো সমূহ নি হে বল্কি নিপটারারো এক ইকোসিস্টেম হে জো লারলা দিনারি বতল নে ওর মজবুত করে হে শ্রী মোদী আওতা ব্রিক্স শিখর সম্মেলন রি মেজবানি সারু চীন নে শুভকামনা মা দেবতা সবলা নতিজা নে বগত সর ইন প্রেরা কামা মায় বদলন রি জরুরত মাথে জোর দিও জিন রো জমিনী থর মাথে অসর দিখে वणा कयो के ब्रिक्स देश मिलने ओ तय करेला के ब्रिक्स रो ढांचो कागजी कार्रवाइया ने आगे बदने असल जिंदगी माए ठोस असर करे।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: ध्यान जोगे के ओ शिखर सम्मेलन भारतरी सदारत माई वीओ जिन रो खास मुद्दों लचीलोपन नवाचार सहयोग और स्थिरता तथा सारू निर्माण राखी जो हो। प्रदेश रा 309 नगरीय निकाय माए विया चुनावा रा वोटा री गिनती काले करी जायला। स्ट्रांग रूम माए राखी जी ईवीएम माए कैद 38,889 उम्मीदवार रा चुनावी भाग्य रो फैसलो दोपहरा ताई आवन री आस है। सवारा 8 बजे शुरू होने वाली वोटा री गिनती में लेर सभी तैयारियां पूरी कर लीजी है। निर्वाचन आयोग रा निर्देश रह पछे निर्वाचन महकमा वोटा की गिनती में साफ गोई स्वतंत्र और निष्पक्ष राखण सारू कई कदम उठाया है। मतदान कर्मियों ने पूरी तैयारी रे साथ भगत सर मतगणना केंद्र माथे पुगण रा निर्देश दिरिजिया है। केंद्र माथे मान्यता वाला प्रवेश पत्र धारी ने माय जामन री मंजूरी दी जायला। मतगणना रे दिन विजय जुलूस रैली निकालन माथे रोक रहेला। काले गणेश चतुर्थी रा आयोजन ने देखना खास सावचेती बरती जावे। भड़का उनारा समर्थकारी भीड़ भेड़ीकरण माथे रोक लगाई जी है। ध्यान जोगो के 9 और 11 सितंबर ने दो चरणा माए पुराविया मतदान रा पहला दौर माए 162 निकाया माए 76.42% वोट पड़िया जबकि दूजा चरण माए 147 नगर निकाया माए कोई 71% वोट पड़िया। निकाया माए अध्यक्ष रो चुनाव 21 सितंबर ने करियो जायला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कहो है कि देश में कोई 87,000 स्वच्छता कार्मिका ने निजू हिफाजती उपकरण किट पीपीई दिली जिया है। मंत्रालय रा सचिव सुधांशु पंत बतायो कि कामकाज रे हिफाजती माहौल और स्वास्थ्य हिफाजत तय करण सारू 76,032 कार्मिका ने न्यारा न्यारा स्वास्थ्य बीमा योजना वाला दायरा में लाई जा है। वना कहो सरकार स्वच्छता कार्मिका ना कल्याण और सम्मान सारू बरोबर कदम उठा रही है। ये सारू कार्मिका ने विगतवार रूपरेखा तैयार करण हिफाजती उपकरण देवण स्वास्थ्य बीमा कवरेज रोकड़ मदद और हिफाजत रा बुनियादी ढांचा ने मजबूत करण जैसा कदम उठाया जावे। श्री पंत बतायो के 983 स्वच्छता कार्मिका सारू कोई 34 करोड़ रुपया री एडवांस पूंजी का सब्सिडी काटी जी है। आ मदद मशीनी स्वच्छता अभियान ने बधावो देवन रे साथ ही कार्मिका सारू आजीविका रा नुआ मौका तय करे है। भारतीय रेल अगस्त 2026 रे दौरान माल ढुलाई माए सालाना आधार माथे 5.4% री चौकी बढ़त दर्ज करी है। ई बगत माए रेलवे 137.9 मिलियन टन माल री ढुलाई करी जबकि अगस्त 2025 माए ओ आंकड़ो 130.9 मिलियन टन रियो हो। रेल मंत्रालय बतायो कि अगस्त 2025 की तुलना में ई बार माल ढुलाई मिलन वाली आमद में 6.27% री बढ़वार हुई है जो रेलवे रा माल ढुलाई कारोबार में बरोबर मजबूती हालात ने दर्शावे है। मंत्रालय मुजब लारला मीना 5 नुआ गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू करी जा। इन रे पछे कुल कार्गो टर्मिनल री तादाद बदने 149 बैगी है।

0: मंत्रालय बतायो कि लारला मीना 14 अमृत भारत विशेष रेलगाड़िया ने रोजरी सेवा में बदली लीजिया जीणु देश में कुल अमृत भारत सेवा में तादाद बदने 86 वैगी है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल एट द रेट ऑफ EIR न्यूज _ जयपुर यूट्यूब चैनल राजस्थान EIR न्यूज और फेसबुक माथे EIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इंडिया साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और इन जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गणेश चतुर्थी तिवार काले श्रद्धा रह साथ मनायो जायला ई मौके पहला आराध्यरी पूजा अर्चना ने लेर लोगा माय खास उमाव देखण मिले गणेश मूर्त और पूजन री चीजा खरीदन ने लेर बजारा माय भीड़ देखी जावे माटी और पत्थर बनी मूर्ता रे साथ ही गोबर और जूट री इको फ्रेंडली मूर्ति चलन माय है। गणेश चतुर्थी रे साथ ही 10 दिन रा गणेश उत्सव रा आयोजन रोई काले विधि पूर्ण शुरुआत वेला घर घर गणपति बप्पारी चोकिया थर्पण के साथ ठोर ठोर गणेश पांडाली सजाया जावे इनु पहला आज पहले सिंझिया प्रदेश भर रा गणेश मिंद्रा माय मोगनी रोशनी करी जी है। जयपुर रा गढ़ गणेश रणथंबोर रा त्रिनेत्र गणेश कोटा रा खड़ी गणेश अजमेर रा खोड़ा गणेश पाली रा सिद्धपीठ गणेश मिंदर और बीकानेर रा किलारा मिंदर समेत सगड़ा छोटा मोटा गणेश मिंद्रा माय गोरी पुत्र रा पूजन और तिलक नलेर खास तैयारियां करी जी है। राजधानी रा मोती डूंगरी मिंद्र माय आज गणेश जी रे मेहंदी चढ़ाई जायला अठे काले रा आयोजन ने देखता मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन का न्यू कड़ा बंदोबस्त करी जिया है। महाराज सवाई माधोपुर खबरनवीस बतायो कि रणथंबोर रा त्रिनेत्र गणेश मिंद्र माय भरीजरिया मेला माय श्रद्धालुआरी भीड़ उमड़ रही है। अभ्यारण्य वेर जावण वाला रस्ता में लोगों ने जंगली जिनारों हिफाजतू राखण सारू जंगलात महकमो और जिला प्रशासन सावचेती मोड माते है।
1: त्रिनेत्र गणेश के दरबार में भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पदयात्रियों और भक्तों के आने का यह सिलसिला रात भर जारीगा। कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुबह मंगला आरती और दोपहर में जन्म की झांकी मेले का मुख्य आकर्षण रहेंगे। पुलिस और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिजली पानी चिकित्सा रसद के विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे की ओर से मेला स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं जबकि परिवहन विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन से गणेश धाम तक रियायती दरों पर बसें चलाई जा रही है। धर्मार्थ संगठनों की ओर से भी अनेक भंडारे लगाए गए हैं। सतीश वर्मा आकाशवाणी समाचार सवाई माधोपुर।
0: भादवारी दूज माथे आज लोक देवता बाबा रामदेव री जयंती प्रदेश भर में धार्मिक उमाव रे साथ मनाई जावे। जैसलमेर रा रामदेव रा माय सालाना मेलो पूरा परवान माथे है। सवारा पंचामृत अभिषेक और शिखर माथे झंडारोहण रे साथ मेला विधिपूर्ण शुरुआत हुई। दशमीताएं चालन वाला ई मेला में प्रदेश रे अलावा गुजरात मध्य प्रदेश समेत दूजा राज्यों की घनी तादाद में श्रद्धालु बाबा रामसा पीर रा जयकारा रे साथ पूग रिया है। बाबा रामदेव रा प्राकट्य दिवस माथे जोधपुर रा मसूरिया रा बाबा बालीनाथजी री समाधि माथे आज मेलो भरी जय। महाराज जोधपुर खबर नवीस बतायो कि रामदेव रा जावनो पहला श्रद्धालु अठे माथो टेक ने आगे बधे है।
2: बाबा रामदेव जी का मेला उनके गुरु बालीनाथ जी के समाधि स्थल जोधपुर के मसूरिया मंदिर से शुरू हुआ। सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ मेले का औपचारिक आगाज हुआ। 108 दीपों से महाआरती की गई और 108 किलो पंचमेवे के लड्डू का भोग लगाया गया। समाधि स्थल पर बाबा रामदेव जी अपने गुरु बालीनाथ जी से भेंट करते हुए तस्वीर उकेरी गई जिस पर सोने चांदी का वर्क कर पूजन किया गया। बाबा के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु दिन भर से मंदिर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि बाबा रामदेव जी के रूणीचा धाम जाने से पहले जोधपुर स्थित गुरु बालीनाथ जी की समाधि के दर्शन करने से यात्रा सफल होती है। रामेश्वर बेड़ा आकाशवाणी समाचार जोधपुर।
0: सितंबर मिनारा पहला पखवाड़ा रे बीतता प्रदेश में मानसून री गतिविधियां आज बनोड़ी है। मौसम महकमा कानियों आवता दिना बिरखारा दौर रे चालन री आस जताई जी है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के बंगाल री खाड़ी में बनिया कम दबाव रा तंत्र राज्य में बिरखारो नुओ दौर शुरू हुयो है जिनरो असर 16 सितंबर तक बनिया रहण री आस है। तंत्र रा असर अगुणी और दिखणाद हल्का में बिरखारा आसार है। ई दौरान उदयपुर संभाग रा जिला में कठे कठे भारी बिरखारी आस है। ई बीच आज जयपुर समेत अगुणी जिला में कठे कठे छांटा छिड़को और हल्की बिरखाओं मौसम खुशनुमा बनोड़ो है।

बांसवाड़ा में आज दूजे दिन आधा घंटा तेज बिरखावी। एशिया कप क्रिकेट रा महिला T20 फाइनल में आज भारत रो मुकाबलो मौजूदा चैंपियन श्रीलंका रे साथ वेला। दुबई में रात 8 बजे खेलिया जाने वाला मैच में भारत ग्रुप ए में आपरा सगला मैच जीतने चोटी माथे रियो। भारत सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने हराया, जबकि श्रीलंका री टीम पाकिस्तान ने हरा फाइनल में ठोड़ बनाई है। जैसलमेर रा पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना काले ड्रोनाथोन 2026 वेला। 3 दिन रा ई ड्रोनाथोन में भारतीय उद्योग जगत री कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीका रो विकास परीक्षण और नुमाइश करेला। मैं अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन गिराओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, ब्रिक्स फगत देशों रो समूह नहीं बल्कि समाधान रो इको सिस्टम है। नवी दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन पूर्ण। प्रदेश रा 309 नगर निकाय ना चुनाव रे तहत काले होन वाला वोटर की गिनती की सगली तैयारियां पूरी। रैली अरजीत राजोक्ष माथे रोक रहे वेला। रामदेव जयंती माथे आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव। गणेश चतुर्थी रो तिवार काले। पहला आराध्य री आराधना ने लेर तैयारियां जोर माथे। और महिला कप T20 क्रिकेट रो फाइनल आज भारत श्रीलंका रे बीच दुबई में खेलो जायला। इंडर साथ ही प्रादेशिक समाचार ओ बुलेटिन अटे पूरो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करो जायला। नमस्कार।

0: खबरों को चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। केवाईसी अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी केवाईसी अपडेट लिंक से बचिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे राजस्थान में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजे। अब किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाइयों ने मांझी भाई नो राम राम। किसान भाइयों, कृषि आपड़े देश ने जे अर्थव्यवस्था है और जे ग्रामीण जीवन है इनी मजबूत आधारशिला है, पर आज ने समय में खेती नु जे काम है, आपड़ो जे कृषि कार्य है, ई केवल परंपरागत तरीका थी के करवा तक सीमित नहीं, बल्कि जे बदलतो थको मौसम है, कृषि नी लागत है, पानी नी कमी है और बाजार नी जे प्रतिस्पर्धा है, आने वैस में किसान भले खेती नो आधुनिक जे तकनीक नो उपयोग करवो बहुत आवश्यक थई गयो है। तो आज अगर आपणे वात करे किसान भाईओ आधुनिक कृषि थी की लाभ हरते लो, तो किसान भाईओ देखो आधुनिक कृषि हूं है, अगर आप आनी बात करो तो आधुनिक कृषि आनो मतलब केवल बड़ी मशीन थी की खेती करवू नहीं, बल्कि आण में उन्नत बीज, मिट्टी नी जांच, सिंचाई नी जे आधुनिक तकनीके हैं, कृषि यंत्र नो उपयोग, मौसम नी जानकारी, एना हाथे वैज्ञानिक तरीका थी की खाद ने कीटनाशक नो प्रयोग और फसल विविधीकरण, और आजे जे डिजिटल तकनीक है जेने थी की खेती करवी जुए, आ सब जे चीजें हैं ये आजे आधुनिक कृषि अंतर्गत सम्मिलित है। तो किसान भाई अगर आप बात करो कि आने थी की आपने लाभ हो मले, तो आने सबसे मोटो जे फायदो है ई है कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन और आने थी की लाभ नी संभावना बढ़ी जाए। उत्पादन वृद्धि ने अगर बात करो किसान भाइयों, तो उन्नत ने आपणो जे क्षेत्र है, जे एरियो है, एने अनुकूल अगर आपणे बीज नो चयन कर, समय उपर एनी बुवाई कर ने संतुलित पोषण प्रबंधन अपनावंगा, तो फसल नी जे उत्पादकता है एने आपणो बढ़ावी शके। बीजो लाभ पाणी नी बचत है, क्या जे पाणी नी बचत बल्ले ड्रीप ने जे स्प्रिंकलर है

यानी जे बूंद बूंद सिंचाई है या फवारा माध्यम थी जे सिंचाई था आवी जे तकनीक है आनो उपयोग थई रह्यो थको है आने थी की फसल नी आवश्यकता अनुसार एने आपण सिंचाई बदले पानी आल तो आने थी की सिंचाई उपर थवा वाळो जे खर्च है एने भी आपण कम करी शक्यो। किसान भाइयों आण में जे खाद है उर्वरक है एनो जे संतुलित उपयोग है एने भी आपण शामिल करो तो आ बात बहुत स्पष्ट है किसान भाइयों कि मिट्टी की जांच ने आधार पर फसल ने जितना पोषक तत्व की आवश्यकता है एनी मात्रा में अगर उर्वरक आलंगा तो आना थी कि खेती जो अनावश्यक खर्चो है ये कम थया और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है एनी जो उपजाऊपन है ये बने न रहेगा। चौथो लाभ है समय और श्रम की बचत यानी ट्रेक्टर है सीड ड्रील है रीपर है थ्रेशर

0: और श्रम नहीं बचत, यानी ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल है, रीपर है, थ्रेशर ने बाकी जो कृषि यंत्र है इन्हें उपयोग करवाते कि कृषि कार्य में जो समय है ये कम करी सके, यानी समय नहीं बचत था और एने थे कि किसानों से श्रम है एनो और समय यानी बे चीजें नहीं बचतता है। किसान भाई आधुनिक कृषि नो पांचो जो लाभ है ई लाभ है कीट ने जे रोग लगी जाए फसल में थे एनो प्रभावी नियंत्रण, यानी आधुनिक कृषि में किसान फसल की नियमित निगरानी कर इन्हीं शुरुआती अवस्था में जे फसल में कीट लगे रहे या जे इनमें रोग आवी जाए इन्हें पहचान करी सके और आवश्यकता पड़े तो एक कृषि विशेषज्ञ की सलाह करीने सही नियंत्रण उपाय अपनावीने आपने जे खेतर में कीटनाशक नो जे खर्चो है एनो अनावश्यक खर्चा तक की बचाव करी सके। किसान भाई मौसम की जानकारी भी आधुनिक कृषि नो हिस्सो है, आज मोबाइल फोन हो, रेडियो हो, अखबार हो या आज भी अलग अलग माध्यम है एने थे की किसान मौसम की जानकारी आराम थी ले सके, बारिश हो, तेज हवा हो, तापमान में कोई बदलाव हो आनी सब निजे जानकारी है एना आधार पर किसान सिंचाई कीटनाशक छिड़काव ने बीजे जे कृषि संबंधित जे कार्य है जितने भी काम है इन्हीं योजना बनावी सके। किसान भाई देखो आधुनिक कृषि नो मतलब आपने पहले बात करी कि आ बिल्कुल नहीं कि किसान महंगी मशीनें खरीदे, आज छोटा जो किसान है कस्टम हायरिंग सेंटर है या जे कृषि यंत्र किराये पर जे थी कि लई सके एने लईने आधुनिक कृषि यंत्र नो लाभ भी उठावी सके। आम नाम जे मल्चिंग है, ड्रीप सिंचाई है, उन्नत बीज है, जैविक ने संतुलित पोषण प्रबंधन है, फसल विविधीकरण ने वैज्ञानिक खेती आवी जे तकनीक है एने आपण अपनावी सके। तो आज किसान भाईओ आधुनिक कृषि आपणे सहायक जे कारक है आने सबने अगर अपनावंगा तो आपणे खेती नी लागत कम करीने वधारे उत्पादन आपण लईने आपणी आर्थिक स्थिति जे है एने आपण मजबूत करी शके, सुदृढ़ करी शके। तो आपणे परंपरागत खेती थी हटीने ज्यादा उत्पादन अच्छी गुणवत्ता नु उत्पादन ने कृषि लागत ने कम करीने वधारे लाभ कमावा बदले आधुनिक कृषि तरफ आपणे पूरी तरह थी रुख करवो जोईए। तो आ तो रही किसान भाईओ आधुनिक कृषि थी की लाभ नी बात वात अगाड़ी भी करो पर एने पहले आ संदेश सांभळी लो।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर, इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: किसान भाइयों आज आपड़ा हाथे मोहन जी हैं और मोहन जी तक जाना के आपड़े क्षेत्र में आपड़ी जो मिट्टी है इन्हीं मिट्टी नो परीक्षण करवो केम आवश्यक है, मृदा नो स्वास्थ्य कार्ड से बने है इन्हें बनाबो केम आवश्यक है। तो मोहन जी आप आना कार्यक्रम ने हमारे वाला जो हमारा किसान भाई है इन्हें आना मृदा परीक्षण ना या मिट्टी परीक्षण ना वो लाभ है केम आवश्यक है और आनो परीक्षण हरते कई रीति और क्या करा बुजुए इन बारे में है या आप थोड़ी जानकारी साझा करो।
3: सब किसान भाई ने नमस्कार, जयराम जी ने जेवी तमे वात उतारी मृदा एटले मिट्टी, मिट्टी नु परीक्षण।
2: बिल्कुल
3: मिट्टी नु परीक्षण एम है के धरती आपणे शास्त्र में कीधु थुकू के माता है, तो माता है एटले एक तरह नो एनु भी एक स्वरूप है, एनु भी एक शरीर है जे के मिट्टी नु बनेलो है। तो जेम आपणे शरीर है एम धरती माता है, के भूरी है, के काली है, के लाल है, के पथरीली है, तो एक अलग अलग तरह नो एनो तत्व है, अलग अलग तरह नी रंग रूप है। तो एनो एक कारण है कि इनमें अलग अलग तरह ना जे पोषक तत्व ही गुणवत्तावार तत्व ही मलेले थक ही ने इना में आपने बीज ना कर तो धरती माता में हर तरह ना तत्व ही हर तरह की फसल हालू उपलब्ध ही। તો

0: हर किसान जागरूक रही ने अपने खेतर ने जो मिट्टी है इन्हों मिट्टी नो आवश्यक रूप से कि आनो परीक्षण करा भी ले
1: बहुत जरूरी है। और इस तरह से देश में प्रत्येक किसान अगर करा रहे तो साथ तो सरकार कने एक पूरु डाटा बेस रहे एक आंकड़ा रहे एना अनुसार भी क्षेत्रवार है इस समय समय पर कृषि वैज्ञानिक ही फसल ने बारे में तकनीकी जानकारी अने पूर्वानुमान लगाड़ी ने कृषक ने सलाह आली सके कि आपड़े हो याना क्षेत्र में पश्चिमी भारत है उत्तर भारत दक्षिण है मध्य पूर्व है तेनुसार किसान ने अनुसार है एक पूरु सिस्टम बनाने राय आली सके ऐसी एडवाइजरी ऐसी सलाह जारी कर सकते हैं जिससे किसानों को लाभ भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है आना आंकड़ा था कि सरकार से अपनी कृषि प्रौद्योगिकी में से योजनाएं बना आगाड़ी खाद्यान्न ने लेने ने जे कृषि आदान्य है लेने तो इन्होंने भी काफी कुछ सरकार है ये बड़ा लेवल में प्लानिंग करी सके कि दलहन की प्लानिंग करो तो कया क्षेत्र में करवी तिलहन की प्लानिंग करो तो कया क्षेत्र में करवी कपास की प्लानिंग करो तो कया क्षेत्र में करवी खाद्यान्न की करो मोटा अनाज की करो तो श्रीअन्न की करो तो कया क्षेत्र में करवी ने आने हाथ एक बीजू भी है कि जे बरसात में पानी आवे तो कृषि के अंदर खेत में हमारा संतुलित सब पोषक तत्व रहेगा तो मिट्टी के साथ जब पानी का सहयोग बनेगा तो पानी भी कम प्रदूषित होगा इन्हें थकी आप रहे ये जंगल जमीन जानवर और जल पूरा पर्यावरण में संतुलन है ये नीचे मिट्टी ना परीक्षण थकी बहुत आवश्यक है। जब घर में आप एक माँ बीमार थी जाए तो इम लागे कि पूरा परिवार कमजोर है पूरा परिवार बीमार है इन्हीं रीते अगर प्रत्येक किसान अगर प्रारंभिक तौर पर अगर थोड़ा समय काढ़ी ना करावे तो मारे ख्याल से देश ना पर्यावरण में अने देश की कृषि प्रौद्योगिकी में एनो बहुत मोटो योगदान आपणे कही शकां लेकिन एने हारू लाभकारी हैस लेकिन समूचा देश अने कृषि अने पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हारू भी आ बहुत उपयोगी है एवं मने लागे
0: बराबर। तो देखो

0: आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: तो किसान भाइयों, देखो संदेश ने पहले आपड़े बात करी था जैविक खाद नी और जैविक खेती ने लाभ नी। तो किसान भाई देखो, आज लोग जैविक खेती नो महत्व समझी रहे, जैविक उत्पादन नी खरीदी करवा लोगों की संख्या बढ़ी रही है, लोग आज आपड़े स्वास्थ्य ने लेने काफी जागरूक थे हैं और अच्छू खाओ आपड़ी सेहत ने अच्छू बनाई रखो एने बदले जैविक उत्पादन की जो बड़ी मांग है एनी मांग नी पूर्ति करवानो काम किसान करी शके और ई किसान आज जैविक तरीका थी की खेती करे तो एने जैविक खेती थी की एने अच्छो लाभ मिली शके। तो जैविक खेती ना महत्व ने समझी ने आपने चरणबद्ध तरीका थी की आने ऊपर अगड़ी बढ़ी ने आपड़ी मिट्टी आपड़ो स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति ने सुदृढ़ करवाना प्रयास अपने करवा जुबे। तो किसान भाई देखो, वात और भी करी थी पर आज नो जो समय है ये पूरो थी रो है, काले कईक नवी जानकारी लेने आपड़े फिर मल। तार तक आप आलो आज मांझी भाई ने आज्ञा, ये आवजू राम राम राम राम।

0: किसान श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। अब हमारे एफएम ट्रांसमीटर से जुड़े श्रोता सुनेंगे दुबई में खेले जाने वाली महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषीय बॉल बाय बॉल कमेंट्री का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और वहीं हमारी लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े श्रोता सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball by ball commentary of the final T20 cricket match to be played between India and Sri Lanka.
3: गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
4: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

फौजी साथियों, अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। फौजी साथियों, आगे चलकर कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ने खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने मम्मी पापा की इच्छा के चलते सिख लाइट इन्फेंट्री को चुना था, लेकिन उस समय रिक्तियों की कमी के कारण उन्हें अपने पसंद की रेजिमेंट नहीं मिल सकी। सन 1997 को उन्हें आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में कमीशन प्राप्त हुआ, यानी ज्वाइन करने का मौका मिल गया, जहां युद्ध और शांति के समय भारतीय सेना को सामग्री और रसद सहायता प्रदान करने का कार्य किया जाता था। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने जिम्मेदारियों को समझा, सीखा और पालन किया। फौजियों की एक हुंकार, एक ललकार ही काफी है, गोलियां तो बाद में बरसती हैं दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए।

फौजी साथियों, वो पल वो मौका जब तक फौजियों के जीवन में ना आए तब तक उनके अंदर कुछ कर गुजरने की ख्वाहिशें हिलोरी लेती रहती हैं। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जीवन में उस कहानी की शुरुआत हुई जब 1999 में वे 12 बिहार बटालियन में सेवारत थे और उनकी यूनिट जम्मू कश्मीर में तैनात थी, जहां उन्हें आतंकवादी विरोधी अभियानों का जिम्मा सौंपा गया था। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी घातक टीम के प्लाटून कमांडर नियुक्त किए गए थे, जिस टीम को जम्मू कश्मीर के अग्रिम सुरक्षित क्षेत्र में स्थित फौलाद पोस्ट पर तैनात किया गया था। अचानक दुश्मन सैनिकों ने भारी तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए थे और पोस्ट पर हमला बोल दिया। चारों तरफ भयंकर गोलों की गूंज फैल रही थी। इधर से भी जवाबी हमले किए जा रहे थे। देखते ही देखते भारतीय सेना के जवानों ने उनके हमले को विफल कर दिया और कैप्टन गुरजिंदर सिंह ने अपने जवानों को तैनात कर दिया था कि दुश्मन की हर एक चालों को नाकाम कर दिया जाएगा। वहीं दुश्मनों की लगातार कार्यवाही हो रही थी, वे अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहे थे। इधर भारतीय सेना ने सुनियोजित अभियान शुरू कर दिया था कि वे दुश्मनों को करारा जवाब देकर ही रहेंगे। इस अभियान को ऑपरेशन बिरसा मुंडा नाम दिया गया। ये नाम भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक के नाम पर रखा गया था। फौजी साथियों, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ने अपने साथियों के साथ योजना बनाई और बंकरों को एक एक करके खाली कराने की मुहिम शुरू कर दी। इसके चलते एक सैनिक घायल हो गया था। दुश्मन वहां पर भी अपने हथियार से गोलियां बरसा रहे थे।

तभी कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी ने अपनी राइफल उठाकर दुश्मन के दो सैनिकों पर वार कर मार गिरा दिया। देखते ही देखते दुश्मनों की ओर से गनों में शांति छा गई, लेकिन इसी दौरान उनकी बाह में दुश्मन की गोली जा लगी। अपनी परवाह किए बगैर उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व

जारी रखा और एक बंकर में हथगोले फेंक दिए। फिर वे भी उस बंकर में घुस गए और अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। होनी यहाँ पर होकर रही। अचानक दुश्मनों ने ग्रेनेड चला दिया जो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जा लगा। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी चोट को अनदेखा कर वे मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने अस्पताल जाने से मना कर दिया और अंतिम सांस तक अपने फौजी साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हो गए। 25 वर्ष की कम उम्र में उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और शहीदों के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए। उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण सेवा भाव हमेशा याद किया जाएगा।

फौजी साथियों, इस युद्ध में दुश्मन सैनिक भी मारे गए और उनके कई बंकरों को नष्ट कर दिया गया था। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को उनकी असाधारण वीरता जाबाजी के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2000 में मरणोपरांत महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया और इस तरह वे सेना आयुध कोर के पहले अधिकारी बने जिन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ।

रुकना नहीं, झुकना नहीं, ना ही टूटना है, हारना सीखा नहीं मेरे देश के जवानों ने, उन्होंने तो बस मौत को जीतना सीखा है। फौजी साथियों, ऐसे वीर अदम्य साहसी कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को दिल से नमन प्रणाम करती हूँ।

आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर मंत्री वर्मा का और संपादन मनीषा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाया प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले ने। तो अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे मास्टर इब्राहिम अजमेरी का क्लैरिनेट। आज की फिल्में हैं गंगा जमुना और कन्हैया।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, फिल्म का नाम था गंगा जमुना, गीत शकील बदायूनी का था, संगीत नौशाद का।

अभी आपने मुकेश की आवाज में सुना कन्हैया फिल्म का गाना, आज आपने मास्टर इब्राहिम अजमेरी का क्लैरिनेट सुना। अब आज का इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: आज के हवा महल में हम आपको सुना रहे हैं वीएम आनंद का लिखा प्रहसन राजेश और राकेश, निर्देशक हैं श्याम सुंदर प्रसाद।
1: डैडी डैडी,
2: ओहो, आज तो हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। अरे भाई, आखिर बात क्या है?
1: डैडी, मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ।
2: खुशखबरी? वाह वाह वाह, तो फिर सुनाओ भाई, क्या खुशखबरी है?
1: वो राजेश है ना?
2: राजेश? कौन राजेश?
1: वही राजेश जो हमारे घर आया करता है। उसने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है।
2: क्या? तो तुम्हारी शादी और उससे? ये कभी नहीं हो सकता।
1: क्यों नहीं हो सकता? हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं।
2: लेकिन मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है।
1: टैडी, आप राजेश को अच्छी तरह नहीं जानते। वो बहुत अच्छा लड़का है। आज मैंने उसे घर पर इनवाइट किया है।
2: अरे आने दो उस बदमाश को, मैं उसकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा।
1: अरे राजेश, आ गए तुम? अंदर आ जाओ। टैडी, ये है राजेश।
3: लेकिन मैं तो
2: बच्चू, रोज छुप छुप कर मेरी बेटी से मिलते थे, आज मेरे जंगल में आ गए हो। अरे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहाँ है मेरा हंटर?
1: टैडी टैडी, आप क्या कह रहे हैं?
3: सुनिए सर, सुनिए मेरी बात तो सुनिए।
2: अरे ऐसे नहीं मानेगा
3: सर, मेरी बात तो सुनिए।
2: नालायक बच्चे।

0: डैडी रुक जाइए, डैडी रुक जाइए, मत मारिए मेरे राजेश को, इस हंटर से न मारो मेरे दीवाने को।
1: तो बरकदार कैसी पिटाई लगाई, मैं
2: मर गया मर गया। सर पिटाई तो आपने बहुत अच्छी की, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि मैं आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई है।
1: उठाई अबे अबे तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा बेशरम, पहले तो तुम हाथ धोकर बेटी के पीछे पड़ गए और अब उससे शादी करना चाहते हो।
2: जी
0: राजेश हिम्मत रखो, तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं डैडी को मना लूंगी, हमने प्यार किया है, कोई जुल्म तो नहीं किया
2: है। अरे किसका वक्त ने तुमसे प्यार किया है, मैं मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं तुमसे प्यार करूं।
1: देखा देखा बेटी, चार हंडर पड़े और प्यार प्यार सब भूल गया।
0: ये तुम क्या कह रहे हो राजेश?
2: अरे कौन राजेश, मैं राजेश नहीं हूँ, नहीं हूँ।
0: नहीं नहीं ऐसा मत कहो राजेश, ऐसा मत कहो, प्यार करने वाले छोटे मोटी पिटाई की परवाह नहीं करते, वो तो हंसते हंसते जान दे देते हैं।
2: ओहो मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़ दो, मैंने कहा नहीं, मैं राजेश नहीं हूँ, मैं उसका पत्नी सिर्फ जुड़वा भाई राकेश हूँ।
0: क्या जुड़वा भाई राकेश?
1: क्या कहा तुमने, राकेश?
0: लेकिन तुम तो बिल्कुल राजेश नजर आते हो।
2: हाय यही तो रोना है, सिर्फ हमारी शक्लें ही नहीं बल्कि हम कपड़े भी एक ही तरह से पहनते हैं। हाय
0: तो फिर कहाँ है तुम्हारा भाई राजेश?
2: हाय राजेश ने मुझे बताया था कि वो इस वक्त यही होगा, मैं उसे एक जरूरी मैसेज देने आया था।
1: अरे बेटा अरे मुझे तो पहले ही शक पड़ गया था कि तुम वो नहीं हो। अरे बेटा तभी तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा।
2: जी
1: हाँ,
2: यानी कि आपने कुछ नहीं कहा?
1: नहीं
2: बिल्कुल, आपने तो कुछ कहा ही नहीं।
1: तो तुम्हारा क्या नाम है? राकेश। सुनो भाई, तुम जल्दी से घर जाओ और अपने जुड़वा भाई, क्या नाम

0: जुड़वा भाई क्या नाम है यार उसका, राजेश, उसको यहाँ भेज दो।
1: जी राजेश को यहाँ भेजू?
0: हाँ, हाँ, उसकी ये हिम्मत ये मजाल कि मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अरे देखता हूँ कैसे करता है वो मेरी बेटी से शादी।
1: जी जी जी मैं बिल्कुल समझ गया, मैं समझ गया, मैं उसे अभी जाकर भेजता हूँ।
2: टैडी, आपने उसके जुड़वा भाई की पिटाई कर दी, मैं बर्दाश्त कर गई। अब अगर आपने राजेश को कुछ कहा तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी।
0: अरे बेटी, तुम तो हर वक्त कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो, अब मरोगी तो कुछ खाकर ही मरोगी ना। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ।
2: राजेश तुम आ गए, कहाँ थे तुम?
0: मैं ये हंटर लेकर कब से तुम्हारे इंतजार में हूँ। हंटर खाने के लिए तैयार हो जाओ।
2: नहीं नहीं, ये पहले रसगुल्ले खाएगा।
0: ये पहले हंटर खाएगा।
2: ये रसगुल्ले खाएगा।
0: ये पहले हंटर खाएगा।
2: रसगुल्ले खाएगा।
0: हंटर क्यों बे कभी दे है? अब कभी जाओगे मेरी बेटी से मिलने के लिए?
1: अब किसे मारे जा रहे हैं?
0: किसे मार रहा हूँ, किसे मार रहा हूँ? अरे अरे राजेश को मार रहा हूँ, और किसे मार रहा हूँ? अरे क्या बदतमीजी है, तुम मार खा के भी हंसे चले जा रहे हो यार, कमाल की चीज हो।
1: मैं तो आपकी नादानी और नासमझी पर हंस रहा हूँ।
0: मतलब?
1: मतलब कि आप जिसे मार रहे हैं वो राजेश है, अब पिट रहा है राकेश।
0: राकेश? अरे अरे राकेश तो पहले आया था भाई।
1: जी हुजूर, मैं वही राकेश हूँ जो पहले आया था और जिसे आपने पहले पीटा भी था।
0: और फिर दोबारा पिटने आ गए हो क्यों?
1: मैं तो आपको ये बताने आया था कि राजेश अभी घर पर नहीं है, वो शायद एक घंटे में आएगा।
0: ओपो आई से गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस।
1: मैं जा रहा हूँ।
0: माय गॉड, आई एम फेड अप। राजेश राकेश राजेश राकेश राकेश राजेश राकेश, अब कौन है? जाकर देखो, जाकर देखो कौन है।
3: नमस्कार।
0: अबे अरे फिर आ गए तुम?
3: जी मैं तो
0: आज से यू गेट आउट। देखो मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है, तुम राकेश ही हो ना?
3: जी नहीं सर, आप फिर गलती कर रहे हैं।
0: मतलब
3: ये कि मैं राकेश नहीं हूँ, मैं राजेश हूँ।
2: ओह राजेश, तुम कहाँ थे अब तक?
0: अरे अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा इस राजेश और राकेश के चक्कर में। राजेश राकेश,
3: मैं सर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं राजेश हूँ, राजेश हूँ। वही बदनसीब राजेश जिसने आपकी बेटी से प्यार किया, जो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। वही बदनसीब राजेश जिसके भाई राकेश को आपने दो दो बार हंटर से पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि उसका भाई राजेश आपकी लड़की से प्यार करता है। अगर आपने पीटना ही है तो शौक से मुझे पीटिए, उठाइए हंटर। अब तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी यतीम खाने में भर्ती हो जाऊंगा, या मेलिया एक्सप्रेस गाड़ी पर बिना टिकट के सवार होकर छलांग लगा दूंगा, या किसी नदी में कूद पड़ूंगा, या आपकी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा, वही आपके खटारा गाड़ी के नीचे। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जैसे जल्लाद बाप की बेटी से मैं शादी घर के नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
2: नहीं ऐसा ना कहो राजेश, ऐसा ना कहो।
0: हाँ, और मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि तुम जैसे बदतमीज लफंगे से शादी करने की बजाय मैं अपनी बेटी को किसी स्विमिंग पूल में धकेल दूंगा।
2: मुझे स्विमिंग आती है डैडी।
0: ओह यू शट अप। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई राकेश से कर
3: दूंगा। राकेश से?
0: हाँ।
3: अरे वही डरपोक राकेश जो दो दो बार आपसे हंटर खाकर और उसने ऊंट तक नहीं की।
0: हाँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि राकेश ने जिस प्यार और जिस हिम्मत से मेरे हंटर खाए हैं वही मेरा दामाद बन सकता है।
2: डैडी
0: क्या है?

0: आप क्या कह रहे हैं? मैं प्यार राजेश से करूं और शादी राकेश से? कभी नहीं होगा दादी, कभी नहीं।
1: बिल्कुल नहीं।
2: तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेटी, दोनों का एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक ही आवाज है और एक ही शक्ल है। देखो बेटी, ये हक मत पर बात करो, तुम जाओ, तुम जाओ
1: जी।
2: और राकेश को यहाँ भेज दो, उससे कहना पूरे 5 बजे वो यहाँ पहुँच जाए,
1: नहीं तो जी
2: नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
1: पूरे 5 बजे क्यों?
2: मैंने फैसला कर लिया है कि राकेश और मेरी बेटी की रिंग सेरेमनी आज ही 5 बजे हो जाएगी।
1: जी रिंग सेरेमनी?
2: और हाँ कहना, दोनों अंगूठियां मैं ही बाजार से लाऊंगा, बस वो सिर्फ 5 बजे यहाँ पहुंच जाए।
1: अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं अब यहाँ रुककर क्या करूंगा? अलविदा, मैं जा रहा हूँ अमेरिका के लिए।
0: नहीं नहीं, मत जाओ राजेश, मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के।
1: हम तो चले परदेश, अब परदेसी हो गए।
2: पांच बज गए और ये राकेश का बच्चा अभी तक नहीं आया, क्यों आया?
0: मुझे क्या पता, अगर आप मेरी शादी राजेश से करते तो देखते कि वो कितना पंक्चुअल है।
2: आओ आओ बेटा राकेश, अंदर आ जाओ, तुम्हारी इंतजारी कर रहा था। अरे अरे मेरे लाल, अरे बेटा तुम्हारे पीठ में दर्द वर्द तो नहीं है बेटा? बातें वादे बाद में करेंगे बेटा, पहले रिंग सेरेमनी। ये लो ये अंगूठी, तुम मेरी बेटी की अंगुली में पहनाओ। और बेटी चलो इधर आओ, इधर ये अंगूठी। और ये अंगूठी तुम राकेश बेटे के हाथ में पहनाओ। अरे जल्दी करो, नहीं तो वो बदमाश राकेश आ गया ना, तुम एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया।
0: डैडी आप क्या कर रहे हैं?
1: लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए।
2: अरे अरे बेटा सुनना क्या है, अरे तुम यही कहना चाहते हो ना कि जिस लड़की से तुम्हारे भाई ने प्यार किया है तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? लेकिन मैं कहता हूँ पहनाओ एक दूसरे को अंगूठी, वरना देखो मेरा हंटर।
1: लीजिए पहना दे अंगूठी।
2: वेरी गुड। अब बेटी तुम भी अंगूठी पहनाओ। बेटी मत रो, जो तकदीर में होता है वो होके ही रहता है। और बेटा राकेश, लड़कियों को रोते सुना था, तुम क्यों रो रहे हो?
1: मैं तो रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं।
2: खुशी के आंसू? कैसे खुशी के आंसू?
1: जी जी ये खुशी के आंसू हैं।
2: क्या मतलब?
1: मैं राकेश नहीं हूँ, मैं वही बदनसीब राजेश हूँ।
2: क्या
1: जी? मैं तो बताने आया था कि राकेश 5:30 बजे आएगा।
0: राजेश तुम
2: चाहता था कि मेरी बेटी की शादी राकेश की हो, अरे शादी तुमसे हो रही है, मेरी किस्मत।
0: आपको क्या फर्क पड़ता है डैडी?
2: क्यों नहीं पड़ता?
0: एक ही रंग, एक ही आवाज।
3: राजेश और राकेश हवा महल में। अभी आप V.M. आनंद का लिखा ये प्रहसन सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया श्याम सुंदर प्रसाद ने। ये थी आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म राज 3 के इस गाने के साथ। इसे गाया है जावेद अली ने, गीत और संगीत राशिद खान का है।

आइए अब सुनते हैं तुम मिले फिल्म का गाना मोहित चौहान की आवाज में। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, मुझको हुई ना खबर, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में यारिया फिल्म का गाना। इसे लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत से सवारा प्रीतम ने।

आइए अब सुनते हैं लूडो फिल्म का गाना जुबिन नौटियाल और ऐश किंग की आवाजों में। गीत संदीप श्रीवास्तव और श्लोक लाल का है, संगीत प्रीतम का।

आइए अब सुनते हैं यू टर्न फिल्म का गाना असित त्रिपाठी की आवाज में, गीत रश्मि विराग का है, संगीत आरको का।

संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 8:45 होने को है। अब हमारे FM ट्रांसमीटर और लाइव स्ट्रीम से जुड़े श्रोता सुने समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय

0: सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
2: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
7: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र

0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमरीका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48,00,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रूपये की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला टी20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन

0: श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। अब हमारे FM ट्रांसमीटर से जुड़े श्रोता सुनेंगे दुबई में खेले जाने वाली महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषीय बॉल बाय बॉल कमेंट्री का सीधा प्रसारण। और वहीं हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़े श्रोता सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। हमने लिखा
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना। इसे लिखा है वर्मा मल्लिक ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में लैला फिल्म का गाना। इसे लिखा है सावन कुमार ने, संगीत उषा खन्ना का है।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटिले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला।

0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब सुनते हैं शायद फिल्म का गाना मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में। गीत लिखा विट्ठल भाई पटेल ने, संगीत मानस मुखर्जी का है।

0: मौसम आएगा जाएगा।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में आज की आवाज फिल्म का गाना। गीत हसन कमाल का है, संगीत रवि का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? शुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शुदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शुदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, ये गाना फिल्म परदेस का था और परदेस महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी। वो शोमैन सुभाष घई की खोज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष घई जब भी किसी अभिनेत्री को पहली बार हीरोइन बनने का अवसर देते हैं तो उसे एक नया नाम भी देते हैं और ये नाम हमेशा म से शुरू होता है और महिमा के साथ भी यही हुआ। माता पिता का दिया हुआ नाम रितु चौधरी घर में ही रह गया और फिल्मों के लिए महिमा मंडित हुआ नया नाम महिमा। लेकिन इस बात की पूरी जानकारी स्वयं महिमा चौधरी के स्वर में।
1: क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो रितु चौधरी ही दूं कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। मुझे वैसे ही रितु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही चार चार रितुस थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है, आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम रितु रख दिया, तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाए तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कोई भी नाम, कोई भी फर्म जब शुरू की है, जैसे मुक्ता आर्ट्स फिल्म्स, वो सक्सेसफुल रही है। टेलीविजन पे मैंने दृष्टि शुरू की थी, वो एकदम फ्लॉप हो गई, तो एम से नाम रखो तुम। तो मेरे जो पापा हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटियों का नाम है रिधिमा महिमा। मैंने कहा महिमा कैसा है, ही सेइंग इट्स नाइस, तो फिर हमने महिमा रखा।

0: अपने देश से प्रेम करने वाली महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हॉस्टल में रहने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता शुरू से ही रही। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो नेपाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और बोलती भी हैं।
1: दार्जिलिंग को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हु त्यो त्यही दार्जिलिङ मा सिकेको। अन्त हाम्रो नेपाली भाई बहन को बटै सिकेको। अन्त मेरो सबै म्यानरिजम्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लभ अल्सो इज आई लर्न फ्रम द नेपालीज पिपल। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
0: महिमा चौधरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, पर उनका करियर फिल्मों में बनेगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, शुरुआत मॉडलिंग से हुई और उन्होंने एक शीतल पेय का विज्ञापन किया। बस यहीं से वो लाइमलाइट में आई और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। फिल्म परदेश में गंगा के रोल में उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री भी मिली और फिल्म की कामयाबी से शोहरत भी मिली और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। फिल्म परदेश के बाद महिमा की बहुत दिनों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बॉक्स ऑफिस पर वैसी भीड़ जुटा पाती जैसी कि परदेश ने जुटाई थी। लेकिन महिमा के नाम की लगन लोगों को उनकी फिल्में देखने के लिए खींच ही लाती।

महिमा चौधरी की जितनी फिल्म्स अब तक रिलीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार कास्ट वाली हैं। फिर भी हर फिल्म में महिमा ने अपने रोल के साथ न्याय तो किया ही है, अपनी अदाकारी के तीरों से देखने वालों को घायल भी किया है।

दिखने में शोक और चंचल महिमा चौधरी स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत से लोगों में घिरे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब सेट पर आती हैं तो रोल जैसा भी हो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सरस्वती की भूमिका में उन्होंने लोगों को रुलाया भी तो बहुत हंसाया भी।

महिमा चौधरी के संवेदनशील अभिनय से सजी एक और बहुत प्रभावशाली फिल्म थी दिल क्या करे। ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपनी गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्ची का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।

नेहा चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं। इसमें एक ऐसे विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा। फिल्म धड़कन आई सन 2000 में। इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के किरदार में थी। शीतल वर्मा एक ऐसी प्रेमिका जिससे वो प्यार करती है वो किसी और लड़की के प्रेम में दीवाना है।

महिमा चौधरी के अभिनय से सजी अगर फिल्म लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनय था। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है।

बात करें अगर फिल्म बागबान की तो उसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। सलमान खान की वो संस्कारी पत्नी बनी थी और इस रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी करगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेश में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था जहां पिया वहां में। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गईं। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओं, ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिपर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 10 बजे लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: श्रीलंका का स्कोर 2 ओवर के बाद 12 रन।
1: शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गायन फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत के साथ। शब्द लेखन एंडेवर का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आपने मुकेश और लता मंगेशकर को फिल्म सरस्वती चंद्र में सुना। आइए सुनते हैं मन्ना डे का गाया फिल्म वक्त का ये गीत। शब्द लिखन साहिर रुद्यानवी का है, संगीत रवि का।

अपनी मन्ना डे का गाया फिल्म वक्त का ये गीत सुना। आए सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी की रचना को खयाम के संगीत निर्देशन में फिल्म नूरी से। इस गीत का आवाज़ लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने।

अभी आपने मोहम्मद रफी को फिल्म राजा रंग में सुना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म मशाल का ये गीत। शब्द लेखन जावेद अख्तर का है, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: यह शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली पेशकश में भूपिंदर का गाया फिल्म घरोंदा का ये गीत। गुलजार का लिखाया गीत है संगीत जयदेव का।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर, इसमें शामिल

आपने भूपिंदर का गाया फिल्म घर उंदा का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं येसुदास का गाया फिल्म स्वामी का ये गीत। शब्द लेखन अमित खन्ना का है, संगीत राजेश रोशन का।

शामिल है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को फिल्म एक दूजे के लिए मैं सुना। आइए सुनते मुकेश का गाया फिल्म कटी पतंग का ये गीत। शब्द लेखन आनंद बख्शी का है, संगीत आरडी बर्मन का।

का। आइए सुनते हैं अगली पेशकश फिल्म आरोप से। शब्द लेखन आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत का वजीर था मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आरोप में सुना। आइए सुनते हैं इंदिवर की रचना को। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म सफर से इस गीत का आवाज़ ही मुकेश ने।

अभी आपने आशा भोसले को फिल्म उमराव जान में सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश में यशुदास और हेमलता का गाया फिल्म चितचोर का ये गीत। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

नम्रता और येसुदास के गाय फिल्म चित्तचोर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत में ही खत्म होता है। FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 11 बजने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री

0: ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षो में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय 11:05 है। अब आप हमारे FM ट्रांसमीटर से जुड़े श्रोता सुनेंगे दुबई में खेले जाने वाली महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषीय बॉल बाय बॉल कमेंट्री का सीधा प्रसारण, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: Defeated Sri Lanka in the 2022 final. So Neelakshi Silva.